सुप्रभात। मीडे वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की तिथि 20, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 और 36 सेकंड हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483 किलोमीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आई सुनते हैं इस समय चिंतन। वाचन स्वर विजय कुमार सिन्हा का है।
1: आर्ष उगती है, शरीर है, उसमें प्राण है, तभी हम कोई धर्मार्थ कर्तव्य या मोक्ष की साधना कर सकते हैं। अतः इसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। सुजाता से परिचित होने पर साधनारत तापस सिद्धार्थ ने इसे जाना और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति का उचित मार्ग मिला। कई ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं कि सांसारिक कर्तव्य में राग संलिप्त व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई ऐसी उदात्त घटना घटी कि उसकी दशा दिशा पल भर में बदल गई। इन महान आत्माओं ने अपने भीतर आए चमत्कारिक परिवर्तन के पश्चात भी घर परिवार छोड़कर संन्यस्त हो जाने की सीख देने की बजाय कैसे उत्तमोत्तम तरीके से अपना गृहस्थ धर्म, सांसारिक संबंध और कर्तव्य निभाते

0: हुए परम पद पाकर मनुष्य महान लक्ष्य साध सकता है, इसी का मार्ग सुझाया। किंतु ऐसे भी कुछ महापुरुष हुए हैं जिनके ऐश्वर्य पूरित जीवन में कुछ विक्षोभकारी घटनाएं घटी और वे प्रियदर्शी अशोक न बन वैरागी हो गए। वैराग्य के लिए ही उत्प्रेरित करते रहे। राजा भर्तृहरि इस प्रसंग में स्मरण आते हैं। भर्तृहरि बड़े यशस्वी प्रजापालक राजा थे। दिन रात प्रजा की सुख समृद्धि के ही कार्य में लगे रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी पिंगला अत्यंत सौंदर्यवती थी, जिन पर राजा का अत्यंत अनुराग और भरोसा था, किंतु उन्हें उनके पास बिताने को समय कम मिलता था। ऐसे में रानी का आकर्षण अश्वशाला के हृष्ट पृष्ट प्रभारी पर हुआ, जो पदच्युत हो जाने के भय से उनकी आज्ञा का पालन करता था। राजा इन बातों से अनभिज्ञ थे। एक दिन एक तापस ऋषि ने प्रसाद स्वरूप राजा को एक तपहपूत अमर फल दिया कि ऐसा प्रजापालक राजा सदैव बना रहे। राजा ने अतिरिक्त प्रेमवश वो अमर फल अपनी रानी को खाने हेतु दिया और रानी ने चुपके से अपने प्रेमी अश्वशाला प्रभारी को। उक्त अश्वशाला प्रभारी का प्रेम संबंध एक वेश्या से था, जिस वेश्या को एक ऐसे सेठ ने आश्रय दिया हुआ था जिसका मन अपने परिवार जन से उजाड़ हो गया था। वेश्या ने वो फल उक्त सेठ को कृतज्ञता पूर्वक दिया। सेठ ने उसे अपने धर्मनिष्ठ प्रजावत्सल राजा को देना श्रेष्ठ कर समझा। राजा ने फल देखते ही पहचान लिया। गहरी पूछताछ के पश्चात जब उसे वास्तविकता का पता चला तो पत्नी से ही नहीं, राजपाट और सारे सांसारिक संबंध और कर्तव्य से ही वो विरक्त हो उठा और उसके मुंह से सहसा निकला, जिन्हें मैं सदैव चाहता था वो रानी मुझसे अनुरक्त न हो अन्य से अनुरक्त आसक्त थी। वो अन्य भी किसी अन्य से प्रेम आसक्त था और जिस औरत से वो आसक्त था वो भी किसी अन्य से आसक्त थी। इस तरह जिस काम वासना के वशीभूत अन्य अन्य को संतुष्ट करने की क्रिया में लोग जुटे हुए हैं, उस कारण काम को मैं क्यों न समझ सका। अतः उन सभी को धिक्कार, वासना को भी धिक्कार और सबसे अधिक धिक्कार मुझे कि ये तथ्य इतनी देरी से मैं समझ सका।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन स्वर विजय कुमार सिन्हा का था।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, विषय है पोषण वाटिका के लाभ।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियाँ, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियाँ जो हैं और फल जो हैं, जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं, उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद, इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर

0: के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरवी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें। गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें। और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगाएं। जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी, लौकी। तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है। तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि 2-4 पौधे 2-3 दिनों के अंतराल पर लगावें ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके यदि आप पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाते हैं अपने घर के अगल बगल जो खाली जमीन है उनका भी आप सदुपयोग कर पाएंगे और अपनी आमदनी में से कुछ पैसा भी बचा लेंगे जो कि आप सब्जियों की खरीद पर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है जैविक सब्जियां मिलेगी जो कि घर की लगाई होगी और उसमें एक अपनापन महसूस होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल

0: के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं सुनिए वंदना, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है पहले एक देश वंदना।

कभी आपने सुनी है श्याम वंदना? कलाकार थे संजीव अभ्यंकर, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में अब एक पारंपरिक भक्ति रचना कलाकार हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर।

अभी आपने ये देवी भजन सुना, कलाकार थे हरिहरन और साथी। इसी के साथ श्रोताओं, भक्ति संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम उपवंदना अब यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोतो आइए अब सुनते हैं इस समय श्री रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का है।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र, श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर चंदन से ली गई भेंट वार्ता। विषय है सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथिक चिकित्सा कितना कारगर। आपसे बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं हरेंद्र आजाद और हमारे साथ आज विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन हैं स्टूडियो में। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी कितना कारगर है। डॉक्टर साहब सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। जैसा कि मैंने बताया हमारे श्रोताओं के लिए, आज का हमारा विषय है होम्योपैथी कितना कारगर है, सामान्य बीमारी हो चाहे गंभीर बीमारी हो। तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन से इस तरह की डिजीज हैं जिनको हम गंभीर कैटेगरी में रखते हैं और कौन है जो सामान्य है और उनके लिए कितना ये कारगर उपचार है।
2: सर सबसे पहले समझ ले गंभीर कहते किसको है। सर एक टर्मिनोलॉजी होती है जनरल डिजीज
1: जी
2: और क्रॉनिक डिजीज। तो एक आम भाषा में समझ ले कोई भी बीमारी जो साल से एक साल से ऊपर रह जाता हो उसे क्रॉनिक कहते हैं
1: जी।
2: और उसके से कम जो रहता है वो जनरल डिजीज है
1: जी।
2: दूसरी चीज कोई भी पैथी क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथ से बेटर हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सर, अभी आज सुबह की मैं घटना बता रहा हूँ, गोइटर का केस, फाइंडिंग में थायराइड बढ़ा हुआ है, एलोपैथिक सिस्टम ने उसे थायराइड अप्लाई कर दिया
1: जी।
2: पेशेंट का वो नहीं रिलीफ हुआ सर, वो गोइटर का इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ थायराइड इलाज हो रहा है
1: जी।
2: हमारे पास एकदम सेपरेटली उसके लिए डायग्नोज करके एकदम गोइटर का ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही गोइटर ठीक होगा थायराइड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिजीज नहीं है वो सिम्टम था।
1: सर आपने थायराइड का बात किया तो थायराइड के बारे में हम बता दें कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें थायराइड से पीड़ित हैं।

0: क्या इसमें ये दवा कारगर है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है?
1: बिल्कुल, ये पूर्ण रूपेण ठीक होती है, बशर्ते प्रारंभ से ही इसका होम्योपैथ से इलाज किया जाए।
0: जी
1: क्योंकि एलोपैथिक पद्धति में आने के बाद जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो एक्सटर्नल सपोर्ट है, तो जब बाहर से कुछ सपोर्ट मिलता है तो बॉडी खुद की चीज़ों को बनाना छोड़ देती है और वेस्टाइल हो जाती है, और वेस्टाइल होने के बाद इसका उपाय मुश्किल है। लेकिन अगर प्रारंभ में आते हैं तो ये एकदम निसंदेह है, ये ठीक होता है।
0: क्या बात है। तो ऐसे ही कुछ क्रोनिक डिजीज है, जैसे सर कैंसर की बात करते हैं, आजकल हम लोग बीपी की जो समस्या देखते हैं, और कई लोग बताते हैं डायबिटीज हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियों में एक बार दवा शुरू हुआ तो मरते दम तक दवा खाते रहिए, तो क्या आपके यहाँ इसके लिए क्या उपचार है?
1: यहाँ उस चीज़ की वही बाध्यता है कि अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज से आते हैं तो उपाय है, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम के अंदर में इलाज नहीं किया जा रहा है, वहाँ पेलिएशन मेथड चल रहा है। जिस चीज़ की कमी है बाहर से पूरा कर दो, अगर कोई चीज़ बाहर से पूरा हो जाएगा तो शरीर उस चीज़ को बनाना छोड़ देगा। बट इनिशियली जब आप आते हैं हमारे पास, ये 100% क्यूरेबल है, रिवर्सेबल है।
0: सर और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य रोग हैं, जैसे सर्दी बुखार जुकाम जो होता है आए दिन, जो लोग हम में से हर कोई पीड़ित हो जाता है, तो इनमें ये कितना कारगर होता है, त्वरित लाभ मिलता है क्या?
1: ये त्वरित लाभ के लिए सबसे अच्छी पैथी है, एक सामान्य किसी भी चिकित्सक के पास चले जाएं, कोई भी फ्लू के लिए या कोल्ड हो कफ हो 3 to 5 days लग जाता है, यहाँ भी उतना ही लगता है। इसी बुखार के बीच में मैं कुछ दो तीन बीमारियां बता
0: जी
1: दूं। डेंगू,
0: जी
1: जिसके यहाँ आपका पटना शहर इसे हमेशा पीड़ित रहता है,
0: निश्चित रूप से।
1: जो बहुत आराम से ठीक होता है। तो इस सारी चीजें की यहाँ सुविधा है, लेकिन आप किस समय आते हैं, यहाँ लोग होम्योपैथ को मेजिकल बना लिए हैं। सारा सिस्टम पे पहले एलोपैथ सिस्टम में ट्राई कर लिया, आयुर्वेद से ट्राई कर लिया, जब हार बैठते हैं तब होम्योपैथ में आते हैं कि शायद कोई मैजिक होगा।
0: मतलब यहाँ आपकी बातों से एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि कोई भी बीमारी हो तो अगर इनिशियल स्टेज में हम पहुंचते हैं तो यहाँ उपचार बड़ा आसान
1: बस
0: है।
1: बड़ा आसान है।
0: सर अभी का जो समय चल रहा है, गर्मी शुरू हो गई है और इसमें भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, कई तरह के रोग हो जाते हैं, लू लग जाना होता है या लोगों का पेट खराब होता है, लू मोशन जो शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी के उपचार क्या?
1: उपचार तो एकदम है, लू लग जाए उसके बाद उपचार तो संभव है ही है, लेकिन हमारे पास प्रिवेंशन का भी ऑप्शन है।
0: जी
1: एक दवा मैं बता रहा हूँ, ग्लोनाइन 30 potency में आप दिन में एक खुराक ले लें और ढेर सारा पानी पिए, लू नहीं लगेगी। और अगर इसके बाद लू लग भी जाती है तो उसको ठीक करना बहुत आसान होगा, जो स्थिति बिगड़ती है लू लगने का वो स्थिति आएगी ही नहीं।
0: मतलब आपके पैथी में गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी उपचार है और सामान्य बीमारियों का भी उपचार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कई लोगों का ये मानना होता है कि आप लोग जांच वगैरह नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, कुछ ऐसा भी है क्या?
1: नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपके पेट में दर्द है
0: जी
1: तो मुझे कैसे पता लगेगा
0: कि ये
1: कि
0: दर्द कहाँ है?
1: कहाँ है? आप लोकेशन से बताइए कि नीचे दर्द हो रहा है तो हम किडनी इमेजिन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर रेडिएटिंग पेन पूरे पेट में हो रहा है तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो
0: जी
1: उसके लिए अल्ट्रासाउंड कंपल्सरी है।
0: जी
1: हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी।
0: क्या बात है। श्रोताओं तो ये थी कुछ जानकारी सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी कितना कारगर है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर चंदन जी। डॉक्टर चंदन, आप अपना बहुमूल्य समय दिए आकाशवाणी में हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के लिए आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी कितना कारगर, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर चंदन से ली गई ये भेंट वार्ता सुनी। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेब 483.1 मीटर अर्थात 621 kHz पर। लीजिए प्रस्तुत है अब आज दिनभर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे इस सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। आज इसकी 10वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आज का थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, हम आपके लिए प्रसारित करेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा इसी समय में सुबह 9:10। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मकाला अकलियती तबके के लिए फलाही स्कीम। हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर यह विशेष कार्यक्रम। मकाला निगार होंगे जाकिर हुसैन। साथ ही कार्यक्रम में सुनेंगे नातिया कलाम मोहम्मद परवेज आलम से। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार कल्याण में

एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या और बचाव। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर कल्बी फातिमा से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बातचीत करेंगे रूपेश कुमार। कार्यक्रम आओ साथ चले का प्रसारण होगा सुबह 10:45 पर आकाशवाणी की प्रस्तुति में। आज का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे, विषय होगा बिहार की बौद्धिक विरासत। ग्रामीण मेला कार्यक्रम घर में आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। कलाकार होंगी वंदना कुमारी।

0: एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 1:05 पर। युवा कार्यक्रम युवाणी हम आपको सुनवाएंगे शाम 4:30 पर। खेल परिक्रमा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। और कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत शंकर राम से। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा। कुछ ही देर में सुनेंगे आप समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमंत्री अभवत्। श्रीमोदी 14,2000 मई मासस्य 26 दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत्। असौ पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयम् अतिक्रमितवान्, यः प्रथमवारं 25,1900 मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा 64,1900 मई मासस्य 27 दिनांकं यावत् स्वीय सेवां प्रदत्तवान्। निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण पंडित नेहरू वर्यस्य कार्यकालः 98,300,000 दिवसान् यावत् आसीत्। 14,2000 मई मासस्य 26 दिनांकादारभ्य अद्य 26,2000 जून मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कार्यकालः निरन्तरं 99,300,000 दिनानि यावत् जातः, येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधि पर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभवत्। एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायका एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदीवर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यूगिनी

0: जर्मनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। हालचाल पेश है फिल्म संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम प्रातःकालीन सूचनाओं के साथ साथ। अशोताओं बताते चले आपको, आज 10 जून ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 161वां दिन हम लोग मना रहे हैं।

साथ ही आज के दिन 10 जून सन 2026 को भारतीय राजनीति के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनने के लिए दर्ज हो चुका है। और आज वे आज़ाद भारत में किसी भी अन्य नेता से सबसे अधिक समय तक के लिए लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस नए रिकॉर्ड के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभ

Acho que eu tenho nem desse tune. Co. सन 1986 को कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में टेस्ट मैच की जीत का परचम भी लहराया था। बातें इसमें कुछ और भी होगी समय मिलने पर। इस समय आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

हमने अपनी जान कहा।

श्रोताओं बताते चलें, दुनिया भर में 10 जून को ही, जी हाँ, आज के दिन हर साल हम राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वाद का जश्न मनाते हुए, ताकि खाना पकाने में ताज़ी और सूखी जड़ी बूटियां और मसालों के उपयोग से मिलने वाली विविधता और गुणवत्ता का पहचान बन सके आमजनों तक भी। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ बातें। इसके साथ आज का ये कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त हुआ चाहता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का पटना केंद्र, मीडिया वेब 483 से यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

लीजिए प्रस्तुत है अब गीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्रीमती डे को। प्रस्तुत है आपकी आवाज में बीसी गुप्ता का लिखा यह गीत। क्षमा करें, गीतकार हैं बीपी गुप्ता। आपको फिर से बताते चलें, गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रीमती डे के स्वर में।

अभी आप श्रीमती डे के स्वर में गीत सुन रहे थे। इसी के साथ गीतों का आज का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी पटना है, श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वीजी जोग का वायलिन वादन, प्रस्तुत है वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव, तबले पर संगति साबिर खान की है।

शास्त्र संगीत में श्रोताओ, अभी आपने सुना वीजी जोग से वायलिन वादन। आप सुन रहे थे वायलिन पे बजाया राग अहीर भैराव। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का समय अब समाप्त होता है।

8 जून 2026 को आकाशवाणी अपना गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज डिजिटल स्ट्रीमिंग के दौर में भी आकाशवाणी हर आधुनिक प्रसारण तकनीकों को अपनाकर खुद को सशक्त माध्यम के तौर पे स्थापित कर देश की आवाज और पहचान बनकर हर कोने में पहुंच रही है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन को देश के हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को पूरा किया है तथा वर्तमान में अलग अलग चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच को मजबूत किया है। अत्यंत बाल्यावस्था से रेडियो ही मेरा साथी रहा और अब तक है। जब रेडियो सेट की भी आवश्यकता नहीं, 24 घंटे आप अपने मोबाइल पर ही 23 से अधिक भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में न्यूज़ ऑन AIR ऐप, सोशल मीडिया, FM रेनबो, FM गोल्ड एवं अन्य मल्टी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के जरिए विज्ञान, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस सुअवसर पर मुझे भी अत्यंत आनंद और हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस यात्रा का अत्यंत छोटा सा ही सही पर मैं भी एक हिस्सा मानती हूँ खुद को। नंदिता चक्रवर्ती, कलाकार, आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्कूल घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए, और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री

0: रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन

0: करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान

0: ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका

0: देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Center unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
3: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw a rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies.

0: Thank you, Saira. Newspapers have widely noticed Prime Minister Narendra Modi's 12 years in office. Modi completes 12 years. BJP hails transformation, writes in the Sun Times, while the Indian Express headlines, NDA turns 12 today, meets to mark Modi crossing Nehru's tent. In an age of quick commerce taking precedence in every household, the Economic Times informs, Zepto pips Instamartin orders, but lacks Blinkit. Newspapers also carry a picture of vehicles driving through the Zojila Tunnel, Asia's longest connecting the Kashmir Valley to Ladakh, following its breakthrough ceremony at Minamark in Ladakh on Tuesday. And finally, Financial Express writes about Apple's digital assistant. Siri jumps on AI bandwagon in more personal avatar. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi becomes longest-serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जीराम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दत कार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में कयादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, ना कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फ़ौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदराबास और किशिम जजीरे में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अवी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबार के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबार ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शहसुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नबीन ने कहा

0: भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है। हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफ़र 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में NDA की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्ज किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
4: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
3: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सब की अपनी आकाशवाणी। साहित्य, संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत, और भी समृद्ध, और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों, कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना समय, जन जन की वाणी इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयास और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिहार समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को 12 साल की स्वर्णिम कार्यकाल की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिहार को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार समेत एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार की भावी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच समन्वय को और

0: मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गाँव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, जिसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से प्रश्न पत्रों को स्टेट हब तक सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में स्थित 331 परीक्षा केंद्रों पर 1,56,061 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए छात्रों से अपील की है कि प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई फोन, सोशल मीडिया या ईमेल से संदेश मिले तो तत्काल इसकी सूचना ईओयू या नजदीकी पुलिस थाने को दें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान इन स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पटना, नालंदा और गया समेत दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कई स्थानों पर तेज

0: आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटिहार जिले की मघेली पंचायत के ग्यारिका गांव में बारिश के दौरान एक घर पर पीपल का पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए मासिक पेंशन की राशि भेजेंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। बिहार बोर्ड ने सत्र 2026-27 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 30 जून तक सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत द्वारा उनकी सजा पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी। श्री सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले उनकी सजा पर सुनवाई 9 जून को निर्धारित थी। पटना स्थित एएन कॉलेज के पास हुए मैनहोल हादसे में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुटको ने संबंधित कार्य एजेंसी पर 2,01,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए अग्निकांड मामले में बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में काम करने का आरोप है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 किलो मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं किशनगंज जिले के कुरलीकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा चौक स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी कर पुलिस ने 70,00,000 रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी दीपक कुमार की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल के अंदर कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 30 दिन के अंदर उद्योग लगाने की मिलेगी स्वीकृति। दैनिक जागरण लिखता है, देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग के मिले दोनों छोर। दैनिक भास्कर की खास खबर है, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनेगा पटना रिंग रोड, इसके 8वें और अंतिम हिस्से दिघवारा से सराय को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का वर्ल्ड वार, कल से शुरू होगा फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप। आज अखबार की सुर्खी है, फतुहा में अमूल लगाएगी 200 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण इकाई, 200 लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में स्कूल कॉलेज के समय नहीं चलेंगी कोचिंग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल,
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।

0: अगर कहीं दिखे तीन सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
0: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देखिए, जब मैं बचपन में सुना करता था रेडियो और जब मुखिया जी और गीता बहन का कार्यक्रम आता था तो हम लोगों में उत्सुकता रहती थी। गांव के चौपाल पर बैठ के हम जब सुनते थे तो लगता था कि हमारे बगल में ही कोई बैठ करके यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता था। और जब समाचार आते हैं, जो शाम का समाचार हो, सुबह का समाचार हो, दोपहर का समाचार हो, ये समाचार की उत्सुकता हम लोगों में रहती थी कि रेडियो की तरफ से क्या हो रहा है। जब राजनीति में आए तो राजनीति में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो हम लोगों का पहला फोकस होता था कि आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित हो रहा है कि नहीं। और जब आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित होता था तो दूसरे दूसरे जगह जो हमको जानने वाले लोग हैं वो फोन करके कहते थे कि आज रेडियो पर आपका नाम आया है। और सच पूछिए, आज तो इतने नाम आते हैं कि आज उसकी बहुत कौतूहल मन में नहीं रहता है, लेकिन एक समय था जब रेडियो पर नाम आता था तो रोमांच बढ़ जाता था। और आज चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और इस डिजिटल मीडिया के जमाने में भी अभी भी आकाशवाणी बहुत प्रासंगिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के लिए अगर किसी एक चीज को चुना तो आकाशवाणी को चुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में देश के करोड़ों लोग जुड़ते हैं और करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो वह कार्यक्रम पूरा ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो कभी हम लोगों ने न सोचा होगा न सुना होगा। हम सबको इंतजार रहता है हर महीने के अंतिम रविवार 11 बजे दिन का, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आकाशवाणी पर हो। इसके लिए तो हम आकाशवाणी परिवार को और भी बधाई देना चाहेंगे और 90 साल में तो बधाई स्पेशल होगी। जब 8 जून को आपका 90 वर्ष पूरा होगा तो आपके लिए बधाइयों का अंबार चलेगा। पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग आपको बधाई देंगे।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता था।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में आप इस गज़ल को समाप्त कर रहे थे, और यकीनन अहद तिफली यानी जो बचपन का ज़माना होता है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, और वो बच्चा ज़िंदगी के को बहुत ही खूबसूरत समझता है। निदा फाजली ने बहुत ही खूबसूरत सा एक शेर कहा था कि बच्चों के इन नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। समीन, आज एक अहम जानकारी आपके लिए, वो ये कि आज का जो दिन है वो ख़ास तौर पे अक़वामे मुत्तहदा की जानिब से हर साल 10 जून को मुख्तलिफ तहजीबों के माबैन मकालमे का आलम दीन के तौर पे मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशंस। इसका जो मकसद है वो तहजीबी तनों का एहतराम करना, तासुबात का खात्मा करना और आलमी अमन, तरक्की और इफहाम व तफहीम को फ़रोग देना। दो तहजीबें इंसानी ज़िंदगियों में, हम तमाम लोग इसको लेयर्स पे रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह की तहजीबें हैं जिनसे मेलजोल के बाद ही हमारी ज़िंदगी आसान बन सकती है, और इसीलिए इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली ने 7 जून 2024 को चीन की तजवीज़ पर यह दिन मनाने का जो शुरुआत है उसके करारदाद को मंजूरी दी थी। मकसद मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और माशरों के डायलॉग के दरमियान खुले मकान में हौसला अफज़ाई करना, ताकि तनाज़ात को कम से कम किया जा सके। ये दिन इस नज़रिए को इज्तिहाद करता है कि तमाम तहजीबी कामयाबियाँ पूरी इंसानियत का इज्तिमाई विरसा हैं। इसकी अहमियत आज के मुस्तकिल तौर पे दुनिया में ये दिन अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम के ज़रिए आलमी यकजहती को तकवीत देने में अहम किरदार अदा करता है। इस अहम जानकारी के बाद लीजिए सामीन, हम पेश करते हैं ये मकाला, अकलियतों के जो तबके हैं उनके लिए फलाही स्कीम्स क्या क्या हैं, आइए जानते हैं जाकिर हुसैन से।
1: मरकजी हुकूमत के जानिब से अकलियतों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमें। मरकजी हुकूमत ने कौमी अकलियती कमीशन एक्ट 1992 के तहत अकलियतों के लिए कौमी कमीशन कायम किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 मजहबी बिरादरियों यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को इस जुमरे में रखा है। इसके बाद जैनियों को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान की हर शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सिमत में मुसलसल काम कर रही है। मरकजी हुकूमत की गवर्नेंस ने जो कुछ हासिल किया है वह हर हिंदुस्तानी शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए गैर इम्तियाजी हुक्मरानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न, खिताब और इकदामात ने ये जाहिर किया है कि तरक्की के ज़रिया बाख्तियार बनाना ही समाजी नाहमवारियों को दूर करने का वाहिद बामाना हल है। इनके ज़रिया चलाई जा रही फलाही स्कीमों का अकलियतों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वजारत ने अकलियती बिरादरियों की बहबूद के लिए वज़ीरे आज़म के नए 15 निकाती प्रोग्राम नाफिज किया। यह एक वसी प्रोग्राम है जिसमें हिस्सा लेने वाली वजारतों, महकमों की मुख्तलिफ स्कीमों पहलुओं का अहाता किया गया है, जिसका मकसद यह यकीनी बनाना है कि मरकजी तौर पर 6 अकलियती बिरादरियों के पसमानदा और कमज़ोर तबकात को मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने के मसावी मौके मयस्सर हों। मुल्क की इक्तसादी तरक्की प्रोग्राम के तहत तालीम के मौके को बढ़ाना अकलियतों के लिए इक्तसादी सरगर्मियों और रोज़गार में मसावी हिस्सा को यकीनी बनाना मौजूदा और नई स्कीमों के ज़रिए

खुद रोजगार के लिए बेहतर क्रेडिट सपोर्ट और रियासती और मरकजी हुकूमत की मुलाजमतों में भर्ती, बुनियादी ढांचे की तरक्की की स्कीमों में इनके लिए मुनासिब हिस्सेदारी को यकीनी बनाकर अकलियतों की ज़िंदगी के लिए हालात को बेहतर बनाना शामिल हैं। अकलियती अमूर की वजारत ने मुस्लिम खवातीन की सलाहियतों को बरूए कार लाने के मकसद से कई फलाही स्कीमें चला रही है, जिनमें सीखो और कमाओ, नई मंजिल वगैरह में कम अज कम 30% नशिस्तें खवातीन ट्रेनेज के लिए मुख्तस हैं। वहीं नई रोशनी के नाम से इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को तरबियत फराहम करके बाएख्तियार बनाना है। मुल्क भर में अकलियती बिरादरियों को समाजी, इक्तसादी और तालीमी तौर पर बाएख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमें शुरू की गई हैं। स्किल इंडिया स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में से तकरीबन 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अकलियतों यानी ईसाइयों, सिखों, जैनियों, मुसलमानों, बौद्धों और पारसियों की फलाह व बहबूद के लिए पूरे मुल्क में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों महकमों ने बेहतर काम किए हैं। मरकजी हुकूमत तुलबा की तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए कई स्कॉलरशिप भी दे रही है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीमें शामिल हैं। वहीं अकलियती बिरादरियों के तुलबा को एम फिल और PhD जैसी आला तालीम हासिल करने के लिए माली मदद फराहम करती है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन स्कीम भी नाफिज है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, नया सवेरा, मुफ्त कोचिंग और एलाइड स्कीम, जिसका मकसद अकलियती बिरादियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालबात की महारत और इल्म को बढ़ाना है, जिसके तहत गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, प्राइवेट सतह पर तकनीकी और पेशा वाराना कोर्सेज में नामवर अदारों में दाखिला हासिल करने के लिए वजीफा दिया जाता है। सीखो और कमाओ ये अकलियतों के लिए हुनर की तरक्की का एक इकदाम है, और इसका मकसद अकलियती नौजवानों की काबिलियत, मौजूदा माशी रुझानात और मार्केट की सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ जदीद रवायती हुनर में अपग्रेड करना है, जिससे वह मुनासिब रोज़गार हासिल कर सकते हैं या इन्हें खुद रोज़गार के लिए मुनासिब तौर पर हुनरमंद बनाना है। अकलियती अमूर की वजारत ने रवायती फ़नून दस्तकारी बराए तरक्की उस्ताद में हुनर और तरबियत को अपग्रेड करना स्कीम के तहत एक मिशन शुरू किया है, ताकि मुल्क भर के अकलियती दस्तकारों और खाना बनाने के माहरीन को उनकी नुमाइश और मार्केटिंग के लिए एक मौसर प्लेटफार्म फराहम किया जा सके। वजारत के ज़ेरे एहतमाम हुनर हाट्स के जरिया बेहतरीन दस्तकारी और शानदार तरीके से तैयार करदा मसनूआत को वजारत ने कौमी शोहरत के अदारों यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग IIP को डिज़ाइन की मुदाखलत, मसनूआत की रेंज की तरक्की, पैकेजिंग के लिए मुख्तलिफ क्राफ्ट क्लस्टरों में काम करने के लिए तैयार किया है। नुमाइशें और ब्रांडिंग के तहत अब तक देहली, पुडुचेरी, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, रांची, लखनऊ, रामपुर, मैसूर, भोपाल, सूरत, वृंदावन, देहरादून और गोवा में 35 हुनर हाट का इनाकाद किया गया है। इसके नतीजे में 5 लाख से ज़्यादा कारीगरों और इनसे वाबिस्ता लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हुए हैं।
जिनमें से 50% से

0: ज़्यादा मुस्तफ़ीद ख़वातीन हैं। नई मंजिल अक़लियती बिरादरियों के नौजवानों को तालीम और हुनर की तरबियत फराहम करने की स्कीम। इसके तहत गरीब नवाज रोज़गार का तरबियती प्रोग्राम अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को कलील मुद्दती मुलाजमत पर मुबनी हुनरमंदी के कोर्सेज फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल इंडिया डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप की वजारत एक फ्लैगशिप स्कीम को नाफिज कर रही है, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद 1 करोड़ लोगों को हुनर फराहम करना है। वहीं नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन NMDFC लोन स्कीम के तहत पसमानदा तबकात की समाजी व इक्तसादी तरक्की के लिए खुद रोज़गार और आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों के लिए रियायती कर्ज़े फराहम करती हैं। वहीं मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे के मुताबिक 97.2% मुसलमानों ने अपग्रेड शुदा बैतुल खुला तक रसाई हासिल की, जबकि 94.9% ने पीने के पानी के बेहतर ज़राए हासिल की। 31 मार्च 2014 के बाद 50.2% मुस्लिम घरानों ने अपनी पहली खरीदारी या नए घर की तामीर की। 818 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी 20% और उससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले 88 मुस्लिम मरकूज अजला में मंजूरी दी गई है, जिनमें से 657 काम कर रहे हैं। फ्लैगशिप PM जन धन योजना के जरिया कायम किए गए अकाउंट्स में से 42% मुसलमानों के हैं। यह हुकूमत की कामयाब कोशिशों की निशानदेही करते हैं। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 वर्षों में नाकाबिले फरामोश उसूलियाबी हासिल की है, जिसके तहत हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गई है। इस दौरान हुकूमत ने डिजिटल क्रांति UPI मंसूबा को कामयाबी के साथ नाफिज किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट के तौर पर कायम हुआ है। वहीं जबान की सतह पर भी हुकूमत के फलाही काम को आवाम तक पहुंचाने के लिए खुसूसी पहल की गई है। वजारत तालीम महकमा के तहत आने वाली कौमी जबान उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL के जरिया खुतबात मोदी नामी किताब का इजरा लाल किला की फसील से किया गया है। ये किताब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिया 2014 से 2025 तक के तकारीर का उर्दू में तर्जुमा है, जिसका मकसद जबान के फरोग और आवाम के दरमियान बड़े पैमाने पर राब्ता को यकीनी बनाना है। वहीं एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम मुतअद्दिद कारीगरों के लिए लाइफ लाइन बन गई है। मोदी हुकूमत का सबका साथ सबका विकास का नुक्ता नज़र, जिसका मकसद तमाम शहरियों को उनके मजहबी पस मंजर से कत नज़र एक ज़्यादा जामे मुआसरा और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देना, दर हकीकत निचली सतह पर एक इनकलाब है।
1: सामीन, अभी आप अक़लियती तबके के लिए जो मुख्तलिफ तरह की फलाही स्कीम्स चल रही हैं उसके मुतालिक ये वाकफियत समाप्त कर रहे थे। पेशकश थी ज़ाकिर हुसैन की, और आइए इसके बाद हमारी अगली जो पेशकश है वो हम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं। कलाम शायर के तहत परवेज़ अख्तर से नातिया कलाम।

फ़रीज़ अख्तर से आप ये नातिया कलाम समाअत फरमा रहे थे, और इसके बाद आइए सामीन, वक्त हो जाता है हमारी अगली पेशकश बसमे मौसीकी का। लीजिए, इसमें हम जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ।

सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने ये गज़ल समात फरमाई, और अब लीजिए हम जो अगली गज़ल आपको समात करवाने जा रहे हैं वो मुन्नी बेगम की आवाज़ में है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

सामीन मुन्नी बेगम की आवाज़ में आप इस गज़ल को समाप्त कर रहे थे, और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह की है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अब फिल्म संगीत। कार्यक्रम है रसमंजरी। तो लीजिए, शुरुआत में पेश है मन फिल्म के लिए गाया गाना उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: मैं इस फिल्म के लिए लेता मंगेशकर का गाया ये गाना, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है। आयुषोता सुनते हैं, ये है अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।
1: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी
2: बिना नंबर जांचे अक्सर।
0: गीत श्रोता हम आपको सुनवाते हैं एक छोटे से संदेश के बाद।
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

कुछ यूं मिली नजर उनसे बाकी सब नजरअंदाज हो गए। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से रसमंजरी में। ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी चिराग। आइए सुनते हैं भूल भुलैया 3 का ये गाना है, आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार के युगल स्वर में।

अदा से देख लो जाता रहे गला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। लीजिए सुनिए धड़कन फिल्म के लिए गाया एक गीत, जिसे हमने लिया है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में।

आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

0: फिल्म धड़कन के लिए गाए उदित नारायण अलका याग्निक के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूँ और एक कथक डांसर भी हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहाँ हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूँ, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो,

0: सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कंसंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, युववाणी एक कार्यक्रम हुआ करता था उस समय, जिसमें उस समय के यूथ आते थे, अपनी बात कहते थे, अपनी पसंद के गाने सुनाते थे, बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम होता था। शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें। थैंक यू।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार कल्याण। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर कल्बी फातिमा से एक बातचीत। विषय है बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या और बचाव। आपसे बातचीत कर रहे हैं रूपेश कुमार रूप।
2: परिवार कल्याण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे नौनिहालों के जिंदगी से जुड़ी हुई है। जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और जब उनको किसी तरह की समस्या होती है तो हम सारे लोग परेशान होते हैं। आमतौर पर बच्चों के दांतों में कैविटी की जो समस्या होती है, बच्चों के दांतों में जो सड़न होती है, वो बहुत आजकल आम हो गई है। ये देखने में अक्सर आती है कि बच्चों के दांत समय से पूर्व उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो कैविटी उसमें बन जाती है। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जानी मानी दंत चिकित्सक कल्बी फातिमा जी। आइए उनसे हम इस विषय पर बातचीत करते हैं। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: मैं कल्बी फातिमा, PMCH से। मैं आज बच्चों के दांत के समस्या और उसके बचाव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
2: जी मैम, हम लोग शुरू करें उससे पहले सबसे पहले सवाल ये आता है कि बच्चों में दांत आना शुरू कब से होता है?
3: बच्चों के दांत आना शुरू 6-7 महीने में आना शुरू होते हैं और ऊपर और नीचे के दांत के आने की संभावना जो होती है वो थोड़ा डिफरेंस होती है। सबसे पहले जो होता है कि ऊपर वाले जो दांत वो जो होते हैं वो 8 से 5 तरह के दांत होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। सेंट्रल इंसाइजर जो होते हैं वो 8 से 12 महीने में ऊपर के और नीचे के 6 से 10 महीने में आते हैं। ऊपर के लैटरल इंसाइजर जो होते हैं वो 9 से 13 महीने में और नीचे के 10 से 16 महीने में आते हैं। केनाइन ऊपर के 16 से 22 महीने में और नीचे 17 से 23 महीने में। पहला मोलर जो होता है ऊपर का 13 से 19 महीना में और नीचे का 14 से 18 महीना में। और सेकंड मोलर जो ऊपर का होता है वो 25 से 33 और नीचे का 25 से 31 महीना में कंप्लीट हो जाता है।
2: तो दांत मैम आपने बता दिए, बड़े अच्छे ढंग से आपने बताया कि बच्चों के दांत में किस तरह से कितनी अवधि में कौन से दांत आते हैं। अब मैम ये बताया जाए कि हमारे बच्चे अक्सर दांतों की सड़न से परेशान होते हैं और कैविटी उनको हो जाती है, तो मुख्य तौर पर कैविटी का कारण क्या होता है बच्चों में अक्सर आजकल ये देखने को मिल रहे हैं?
3: कैविटी का इंसिडेंस मेनली 3 से 5 साल के उम्र में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो बच्चे के अंदर टेस्ट डेवलप होते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं बच्चे, उसके कारण इसकी इंसिडेंस ज्यादा पाई जाती है। और मेन कंटेंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग कुछ भी खाते हैं उस सब चीज में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होता है और हमारे सलाइवा में, हमारे थूक में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ये दोनों मिल कर करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये लैक्टिक एसिड वहाँ दांत के सबसे ऊपरी सतह इनेमल को वो वीक करता है और पीएच लेवल डाउन कर देता है और एसिड का सिक्रेशन होने लगता है और धीरे धीरे कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और दांत को डीमिनरलाइजेशंस और वीक करने लगता है। जनरली बड़े के दांत के जो ऊपर की सतह होती है एनामल, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन जो बच्चों में जो होती है वो वीक होती है, और यही पीएच लेवल डाउन होने की वजह से डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है।
2: जब मैम ये जो कैविटी आपने बताया कि बच्चों के दांतों की जो परत होती है वो बड़े लोगों की तुलना में

0: कमजोर होती है। तो मतलब किस तरह के जो खान पान है, जैसे आपने कहा कि आज बच्चों के अंदर टेस्ट बढ़ जाते हैं तो वो अलग अलग का खाने लगते हैं, तो हमारे घरों के जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें कुछ अगर स्पेसिफिक ऐसी चीज हो जो खाने से उनको ज्यादा समस्या होती हो तो आप उस पर भी प्रकाश डालें कि हम बच्चों को रोक सकें कि बच्चे ये चीज ना खाएं, या फिर किस तरह से मतलब उनको रोकने का कोई उपाय हो कि कैविटी कम से कम बने ना बने, क्या करें बच्चे या उनके
1: कोई
0: गार्जियन।
1: भी स्टिकी चीज़ जो होती है वो हानिकारक हो सकती है। जैसे स्टिकी में चॉकलेट्स है, चिप्स है और भी, और वो अगर स्टिक कर गया और वो फर्मेंट होना शुरू हो गया तो वो कैविटी की बढ़ाना शुरू हो जाता है। वो तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को सैलेड, फ्रूट्स, नट्स ये सब खिलाया जाए। उससे क्या होता है कि सलाइवा से वॉश आउट होते रहते हैं जो भी गंदगी होते हैं, और वो कैरीज होने से बचाते हैं या डीमिनलाइजेशन होने से बचाते हैं।
0: जी, और मैम हम लोग जब कैविटी की बात करते हैं तो एक बड़े मतलब आश्चर्य की बात होती है कि बच्चों के हर बच्चे पर ये नहीं दिखता, कुछ बच्चे ऐसे भी मतलब आते हैं देखने में जिनके दांतों में कहीं कोई समस्या नहीं होती, और बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके बहुत सारे दांत, कई बार हम लोग ऐसे भी बच्चे देखते हैं जिनके आगे की पूरी दांत उनकी खराब हो गई होती है, और मतलब उसी तरह के साथ में रहने वाले उन्हीं के जो भाई बहन होते हैं उनकी बहुत बार उनके दांत में कोई समस्या नहीं होती, तो ऐसा मतलब क्यों होता है कुछ।
1: ऐसे दांतों को जनरली हम लोग नर्सिंग बोटल कैरीज कहते हैं। जो बच्चा फीड करता है या बोतल से दूध पीता है तो वो मुंह में दूध जमा रह जाता है, तो जिसकी वजह से पूरी रात बैक्टीरियल का लोड रहता है उस पर, और वो धीरे धीरे धीरे फर्मेंट होकर के डिमिनलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को रात में, लेकिन जनरली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चा उस टाइम सोते टाइम इंड्यूस होता है कि उसको बोतल का दूध वगैरह पिए, तो इसके इसके कारण वो बढ़ने लगती है संभावना।
0: अच्छा, मैम एक चीज़ हम लोग ये मैं जानना चाहता हूँ, खास हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि ऐसी वजह एक्चुअली हम बचा कैसे सकते हैं कैविटी से जो बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको फीड भी करना होता है, खाना पीना भी समय से देना होता है, और आमतौर पर बच्चे अनुशासन मानते नहीं हैं, ये मदर फादर की बात मानते नहीं हैं कि ठीक है वो क्या करें, तो कुछ ऐसी सहज चीज़ें हों जो उनके अभिभावक अगर करते हैं तो उनके कैविटी से हम बचा सकते हैं।
1: कैविटी से बचाने का है कि एक 2-2-2 रूल कहा जाता है कि 2 मिनट ब्रश करें, 2 टाइम ब्रश करें और साल में 2 बार डेंटिस्ट से विजिट करें। इससे ये समस्याएं से बचा जा सकता है। और अगर कैविटी हो जाती है तो फिलिंग करवाया जाता है। अगर उसमें दर्द होती है तो बड़े में RCT कहलाता है और छोटे बच्चों में पल्पेक्टोमी कहला जाता है। तो उससे हम लोग ब्रश तो 2 बार बच्चे को, और उस वो ब्रश 2 बार करने से पहले अपने भी खुद भी पेरेंट्स भी करें, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और अलग अलग तरह का फ्लोराइड टूथपेस्ट आता है, वो फ्लोराइड टूथपेस्ट बच्चों को दिया जाए, जैसे चेरियो जेल है, कीडोडेंट है, पेडीफ्लोर है। जो फ्लोराइड क्या करता है, केरीज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आउटर लेयर जो इनेमल का जो होता है उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होता है, वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल फ्लोराइड से मिलकर करके फ्लोर एपेटाइट क्रिस्टल बना देता है, जो एक लेयर बना देता है स्ट्रॉन्ग लेयर, जो कैविटी होने से बचाता है।
0: अच्छा मैम, कैविटी
1: और ये
0: होने
1: कहा
0: से,
1: जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माउथवॉश बच्चों को रिंस करा करके उससे समस्या हल हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती है ना उसको मुंह में रखने की, वो पी जाते हैं, और रेगुलर टाइम तक अगर वो पीते रहेंगे तो वो दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि 12 साल के उम्र के अंदर हम लोग माउथवॉश ना ही इंडिकेट करें बच्चों के अंदर तो बेहतर है।
0: ये अच्छी बात आपने बताई मैम, क्योंकि आमतौर पर गार्जियन सहज रूप से सोचते हैं कि बच्चों को चलो हम माउथवॉश करा दें तो जल्दी से शायद हमारी समस्या निपट जाएगी। मैम एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैविटी होने से अगर बच्चे के दांतों में कैविटी हो जाती है तो क्या मतलब बेसिकली उन पर असर पड़ता है, उनके सेहत पे क्या असर पड़ता है, और इसको हम कितना मतलब सीरियसली लें।
1: कैविटी होने से अगर नर्सिंग बोटल कैरीज है तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको एक एम्बेरसमेंट फील होता है, और उनको दर्द में भी होता है कि हमेशा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चे उतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने दर्द को बड़ों की तरह, तो वो परेशान रहते हैं तो गार्जियन भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए इसको जितना दिन रखा जाएगा तो वो उतना दिन देखा।

0: मदद करेगा। अगर हल्का सा कैविटी रहेगा, माइल्ड कैविटी रहेगा, तो वो हट जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए। उसके साथ टंग क्लीन करने के लिए भी हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। वो खुद पेरेंट्स भी करें टंग क्लीनर, तो बच्चे भी करेंगे टंग क्लीनर। इसलिए जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो फीड वगैरह कराते हैं, तो उसको फीड कराने के बाद उसको सॉफ्ट और वेट वाइप्स से या मुलायम कपड़े से हल्का भिंगा कर करके चारों तरफ से मुंह से पोंछ लेना होता है। या धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो पैसिफायर टाइप से आता है, प्लास्टिक सिलिकॉन टाइप से, वो फिंगर में अंदर कर करके चारों तरफ से बच्चों के, छोटे बच्चों के अंदर। जनरली 3 से 4 साल के बच्चों को पेरेंट्स समझते हैं कि अब उनको ब्रश करना आ गया है, छोड़ देते हैं उनको ब्रश करना। लेकिन नहीं, उन लोग को नहीं तब पता है कि किस तरीके से ब्रश करना है। ब्रश जो होता है, हम लोग को आगे की सतह को ब्रश करने का तरीका अलग है, अंदर की सतह को ब्रश करने का तरीका अलग है। आगे की सतह को जो दांत का लॉन्ग एक्सिस होता है उसको 45 डिग्री एंगुलेशन पे, उस पे रख करके 45 डिग्री एंगुलेशन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ पे हम लोग ब्रश करते हैं, और आगे की सतह को ऊपर के आगे की सतह या नीचे के आगे की सतह, तीन तीन दांत करके उसको साफ करना है। क्योंकि ब्रश का जो लेंथ होता है वो 3 दांत को एट ए टाइम कवर करता है, और उसके बाद से फिर जो अंदर की सतह है वो ब्रश का जो डायमेंशन होता है वो 1 दांत को कवर करता है। तो इस तरीके से 45 डिग्री एंगुलेशन पे एक एक दांत करके साफ करना है, उस तरीके से साफ होगा। बहुत सारे गार्जियन बोलते हैं कि फ्लॉस वगैरह करा सकते हैं, तो फ्लॉस थोड़ा सा टेक्निकली सेंसिटिव होती है, ज़रा सा भी गम लैसरेट हो जाता है या मसूड़ा छिल जाता है तो बच्चे को दिक्कत आने लगती है। अगर वो धीरे धीरे हल्का सा हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो वो अच्छी बातों में माना जाता है।
1: जी मैम, आपने कहा कि ब्रशिंग जो करना है उनके उसके तरीके बच्चों को बताए जाने चाहिए और गार्जियन खास करके बताएं। तो आगे के दांतों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दांतों को मतलब घिसने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं अगर जोर से घिस दूंगा तो शायद हमारे दांतों की जो गंदगी है वो दूर हो जाए। मगर आपने बताया कि कुछ खास तो मतलब आगे के दांतों को किस तरह से सॉफ्टली किया जाए और ब्रश ब्रश किस टाइप के प्रेस्क्राइब किए जाने चाहिए बच्चों को।
0: ब्रश जनरली सॉफ्ट स्टेम का यूनिक एमबी जो नैरो होता है और दूर तक अंदर तक जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक बच्चे करते हैं तो उनको उल्टी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रश यूज़ करें ताकि बच्चे को उल्टी भी नहीं आए, तो इसलिए ज़्यादा ब्रॉड ब्रश यूज़ नहीं करें। और उनके फ्लेवर टाइप से ऑरेंज फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब टाइप के फ्लेवर अगर यूज़ करेंगे तो उन लोग को भी अच्छा लगेगा, इस तरीके से यूज़
1: अच्छा मैम,
0: करना।
1: हम लोग आपने सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, हमने सारी बातें कर ली, बच्चों को कैविटी बनती कैसे है। चलने से पहले इस हम लोग भेंट वार्ता को ख़त्म करें, उससे पहले आप ये बताएं कि इन तमाम समस्याओं से बच्चों को कैविटी हो ही ना और वो स्वस्थ रहें, उनके जो उनकी जो दांत है वो समय के हिसाब से आए और फिर समय के अनुरूप हट जाए, तो इसके लिए क्या आप हमारे श्रोताओं को जो अभिभावक इस चीज़ को सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेंड करें ताकि उनके बच्चे कैविटी का शिकार ना हो और वो बीमार ना पड़े।
0: बच्चे कुछ भी खाए, अगर ब्रश सिर्फ भिंगा करके चारों तरफ से वॉश आउट कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। सबसे पहले इनिशिएट ही होता है सॉफ्ट डिपॉजिट्स, प्लाक डिपॉजिट्स। अगर वही बनना अगर ख़त्म कर देंगे तो आगे की समस्या ही नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट के साथ वो सलाइवा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है वो एक लेयर ही ना बनाए तो समस्या से समाधान मिल सकता है।
1: जी, और खाने पीने की चीज़ों में किस तरह के खाने
0: खाने
1: बच्चों को
0: पीने
1: ज़्यादा
0: में
1: चीज़ें प्रेरित करें कि वो दांतों को।
0: तो ये सलाद है, फ्रूट्स है, नट्स है, जो क्रेविकुलर वाशिंग वगैरह एक करता रहे
1: जिसमें
0: और
1: फाइबर का
0: हाँ
1: कंटेंट
0: फाइबर
1: ज़्यादा।
0: कंटेंट ज़्यादा हो
1: जी
0: तो उससे ज़्यादा बेहतर ही हो सकता है बच्चे को। या
1: जी
0: कुछ भी बच्चे खाए, चॉकलेट से स्टिकी चीज़ कुछ भी, तो वो ब्रश कर ले, रिंस कर ले, माउथ वॉश कर ले।
1: कैविटी को
0: इसीलिए ये बताया जाता है कि जितना भी मिल्क कंटेंट शुगर है या फॉर्मूला मिल्क है, जूस है, कैंटी है, सुक्रोज कंटेनिंग है, ये सब चीज़ कैविटी का इंसिडेंस को बढ़ाता है। तो इसलिए चॉकलेट्स, चिप्स है, ये सब सारे चीज़ स्टिकी इन नेचर होते हैं,
1: जी
0: वो स्टिक करेंगे
1: या
0: और आगे।
1: डिब्बाबंद
0: हाँ
1: चीज़ जो पेय पदार्थ लोग पीना चाहते हैं, ज़्यादातर ड्रिंक्स बच्चे ज़्यादा वो करते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल उनको न दिया जाए
0: हाँ
1: तो ज़्यादा अच्छा
0: अवॉइड
1: होता है।
0: करें वो ज़्यादा,
1: जी
0: और वो अगर पीते हैं कुछ चौकियाँ वगैरह, तो उस टाइम ही अपने पर्स में भी छोटा सा ब्रश रख सकते हैं, चारों तरफ से उसको ब्रश करा लिया, एक बार कुल्ली करवा लिया, तो उसको आगे की संभावना

0: उसकी घर जाएगी।
1: जी,
0: अगर ज्यादा
1: और अगर
0: सर जाता है
1: समस्या कुछ
0: डॉक्टर।
1: आती है तो आप जाकर कम से कम डेंटिस्ट से जरूर मिलें इस बात को लेकर के।
0: इसलिए वो
1: जी
0: टू टू टू रूल फॉलो करेंगे तो बच्चों को और बड़े को भी अच्छे लगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी फातिमा मैम आप हमारे स्टूडियो में आईं और आपने बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या और बचाव विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या और बचाओ, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर कल्बी फातिमा से ली गई ये भेंट वार्ता सुनी। आपसे बातचीत कर रहे थे रूपेश कुमार रूप। इसके साथ आज का हमारे कार्यक्रम परिवार कल्याण अब यहीं समाप्त होता है।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: ये आकाशवाणी पटना है, श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का विषय है बिहार की बौद्धिक विरासत। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चलें।
7: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया।

महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहाँ हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात ना कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहां पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। पांचवीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना आगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल यानी जिसे

0: आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है, उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।
1: कदाचन

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर भूमि भी रही है। पटना के पास तारेगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य की। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथाशिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन

0: प्रशासनिक परीक्षाओं, यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। आज का विषय था बिहार की बौद्धिक विरासत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियां और समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 10 जून सन 2026 को अपराह्न 3:30 से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-2222-500। एक और नंबर है 0612-4026-349। फोन नंबर कृपया एक बार फिर से अवश्य मिला लें। पहला नंबर है 0612-2222-500 और दूसरा नंबर है 0612 के बाद 4026-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 10 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। सुनते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हेलो,
0: कौन कहाँ से?
1: कश्मीर सोना मार्ग से आपका रेगुलर श्रोता लतीफ अहमद रेहना।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हालचाल है, बताएं आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा सर, आप ठीक है?
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सब
1: हाँ,
0: कुछ
1: यहाँ
0: ठीक
1: पे
0: ठाक।
1: सुबह से थोड़ा मौसम बादल है, आज यहाँ पे पानी भरा रहा है।
0: बारिश हो रही है?
1: नहीं अभी तो थोड़ा हल्की फुल्की।
0: अच्छा, थोड़ी फुहार जैसी है, मतलब बारिश हो नहीं रही है।
1: हाँ, गर्मी तो दिन में तो अच्छा रहता है, सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड।
0: दिन में गर्मी हो
1: हाँ,
0: जाती है क्या, धूप होती है?
1: और दिन में तो लगभग 33-34 तक ही होता है।
0: जी,
1: हाँ,
0: वहाँ तो काफी ठंड पड़नी चाहिए, अभी इतनी गर्मी कैसे हो गई?
1: दिन में तो पड़ता है गर्मी, सुबह शाम तो कूल मौसम होता है।
0: अच्छा, तो आपके
1: हाँ,
0: काम धाम का क्या हाल चाल है? काम
1: बहुत
0: धाम चल
1: अच्छा।
0: रहा है बढ़िया?
1: हाँ, बढ़िया।
0: क्या सुनवाया जाए बताइए।
1: आज मुझे सुनना है राजा हिंदुस्तानी का, आई हूँ मेरा जिंदगी में तुम
0: ठीक
1: बहार बन के।

0: नमस्कार सर, मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कहिए कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। आप लोग की मेहरबानी है, ऊपर वाले की कृपा है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं।
1: जी बहुत अच्छा, मौसम का आनंद आप ले रहे हैं। गर्मी है तो गर्मी के भी अपने मज़े हैं,
0: जी
1: तो गर्मी के मज़े कैसे कैसे आप ले पा रहे हैं हमें भी कुछ बताइए।
0: बस दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बस काम लगे रहते काम।
1: अच्छा,
0: जी सिलाई का काम करता हूँ मैं, कपड़े सिलता हूँ। जी
1: तो कपड़े के सिलने में ये रेडियो सुनने से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता आपको?
0: कोई डिस्टर्ब, उससे तो अच्छा काम होता मेरा। जिस दिन लाइट नहीं रहती, काम नहीं चल पाता है, तो फिर मतलब काम में मन ही नहीं लगता।
1: अच्छा, आपने रेडियो सेट रखा हुआ अपनी दुकान पर,
0: जी
1: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इन दिनों काम धाम बढ़िया चल रहा है आपका?
0: जी शादी का काम चल रहा है इस टाइम तो
1: हाँ
0: बढ़िया काम।
1: जी, वही शादी ब्याह का मौसम है, लगन में काम बढ़ जाता है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्या सुनवाया जाए?
0: धन्यवाद। वे अनीता फिल्म का है, कैसे कहूँ करूँ मैं प्रेम की बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुड्ढा खांसता।
1: ठीक।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जय माता जी। पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया है, आप सुनाओ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन दिनों क्या मौसम है आपकी तरफ?
1: जी मौसम अच्छा है, यहाँ मौसम गर्मी पड़ने लगे। आपके उधर बताओ।
0: नहीं, हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ रही है, लेकिन इन दिनों बादल घिराए हैं तो उससे थोड़ी हवाएं ठंडी चल रही हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, और आपकी तरफ का हालचाल तो मुझे दूसरे माध्यम से ज्ञात होता है। अभी तापमान काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में।
1: हाँ हाँ जी, हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी ज्यादा तो नहीं हुई पर हवा चली थी सर।
0: अच्छा, वहाँ भी बादल हैं?
1: हाँ बादल था, सुबह थोड़ी बहुत हुई थी, बारिश हुई थी।
0: अच्छा, बारिश हो चुकी है, तब तो ठीक है।
1: जी
0: कुछ हवाओं का आनंद भी ले रहे होंगे आप।
1: हाँ जी, हाँ जी ठंडी हवा चलती रहती है जब बारिश का मौसम हो जाता है ना। तो फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और गाने के बोले सैया सुन लो दिल की बात, धक धक ऐसा कुछ एक गाना है। रहेगा
0: ठीक है,
1: मूवी आपके पास है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।

0: ऑन एयर फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: जी हम ग्राम साईडी जिला नालंदा से अर्जुन प्रसाद बोल रहे हैं।
0: जी अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर नमस्कार।
0: जी अपने बारे में कुछ हमें जानकारी दें।
1: हाँ सर आपसे तो बराबर बात होती है, आज बहुत दिन के बाद फोन लगा है।
0: जी जी
1: हम खेती बाड़ी करते हैं कुछ।
0: हाँ हाँ
1: तो सब्जी वगैरह लगा हुआ है खेत में।
0: अच्छा।
1: और मूंग लगा हुआ है।
0: जी सब्जियां और मूंग दोनों?
1: जी दोनों।
0: जी तो अभी तो मूंग की फली आ गई होगी आपकी?
1: जी ना मैं अभी पीछे है तो थोड़ा सा फूल वगैरह।
0: अच्छा आपका पीछे फसल है।
1: जी
0: सब्जियों में क्या है अभी आपके यहाँ?
1: अभी जी भिंडी है 2 कट्ठा लगाए हैं, परोर 2 कट्ठा लगाए हैं, यही सब है।
0: इस भिंडी और परवल को आप खेत से बेचते हैं या कि फिर बाजार में भेजते हैं?
1: ना बाजार ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं। जी सर वो गाना सुनना था।
0: बताइए।
1: दुनिया बनाने वाले तेरे क्या मन में समाई।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम नजीमुद्दीन साहब सीताकुंड मुंगेर से।
0: सीताकुंड मुंगेर से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: अपने बारे में सर, अभी खेती का इसी का समय गेहूं थी तो तैयार हो गई फसल, थोड़ा
0: गेहूं की
1: सा हाथ
0: तैयार
1: में
0: हो
1: मल
0: चुकी
1: जा।
0: है, अभी कटनी नहीं हुई है गेहूं की अब तक।
1: नहीं, तैयार हो गई फसल, घर आ गया। जी,
0: अच्छा, घर ले आया फसल काट कर।
1: थोड़ा सा आम का कुछ मैंने फसल है, आम की मान लिया तो वहीं बैठे हैं बागीचा में, वही थोड़ा सा
0: अभी तो आम
1: से बात।
0: छोटे छोटे होंगे, बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: सर,
0: साइज
1: अभी
0: नहीं बना
1: छोटे
0: होगा।
1: हैं। नहीं, अभी नहीं बनाए सर, अगर
0: जी
1: बारिश हो जाती तो थोड़ा सा उसमें लाभ होता, लेकिन बारिश तो है नहीं। मौसम थोड़ा सा बदली लगी हुई है, लेकिन बारिश होने रही है।
0: जी जी जी हाँ, बदली तो है। तो ये आम की कौन सी किस्म है आपके पास?
1: एक मालदा है सर, मान लिया, और एक मुंबई करके है, बम्बई से हम लोग बोलते हैं। दो तरह का है सर, और एक फजली है, मान लिया हम लोग बोलते हैं।
0: अच्छा, इसको बेचते कहाँ पर हैं आप?
1: ऐसे व्यापारी आते हैं मुंगेर शहर से और बागीचा में आते हैं, नहीं तो ले आकर हम लोग मार्केट में छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने बागीचे में जाते हैं मैंने व्यापारी, तो वो गिनती से ले लेते हैं मान लिया। जी हाँ,
0: तो
1: एक आगे
0: ये
1: हाँ,
0: वजन से नहीं होता है, गिनती से होती है।
1: गिनती से मान लिया। जी
0: अच्छा, तो उसमें आमदनी आपको ठीक ठाक होती है?
1: जी हाँ, ठीक ठाक। इस बार तो सर फसल चूंकि बहुत खराब हो गई है, लेकिन जिनको है मान लिया तो उसमें थोड़ा सा लाभ ज्यादा, इसलिए कि उस फसल खराब हो गई है तो आम की फसल खराब हो गई है तो कमी है उसकी, इसमें लगता है कि कुछ भाव ज्यादा रहेगा, लाभ ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, उसकी देखभाल नहीं कर पाए क्या ठीक से?
1: देखभाल किए लेकिन प्रकोप लग गया सर, बीच में जो बारिश हुई थी, थोड़ा सा बर्फबारी हुई थी ना,
0: हाँ,
1: उसमें प्रकोप हो गया, और उसने स्प्रे वगैरह किए थे, लेकिन हवा ऐसी चली नहीं कि थोड़ा सा उसमें जो है ना, मतलब कि मंजर पे ही थोड़ा सा प्रकोप हो
0: अच्छा,
1: गया।
0: चलिए
1: लेकिन
0: उम्मीद करते हैं बाकी फसल अच्छी लें आप। आज फोन किया आपने, क्या मन बनाया है?
1: मन बनाया सर करोती फिल्म का गाना, सुरेश भट्ट के आवाज में, चल चमेली बाग में।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ सर, नमस्कार सर।
0: जी
1: बक्सर से बोल रहे हैं, पांडेपट्टी गांव से सर।
0: बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, हम 20 बरिस से सर फोन लगा रहे थे। हाँ
0: चलिए, आज लग गया फोन, कैसा लग रहा है ये बताएं।
1: सर, सब ठीक है। अरे हेलो, फनी फरमाइश सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं।
0: करते क्या है वैसे आप?
1: हम कुछ नहीं करते हैं सर,
0: तो कैसे समय बिताते हैं आप?
1: रेडियो सुनकर सर समय बिता लेते हैं।
0: अच्छा जी, तो
1: हाँ
0: कार्यक्रमों
1: सर, हम
0: की चर्चा ही करें हमसे, कौन कौन से कार्यक्रम आप पसंद करते हैं बताइए।
1: योग वाणी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं। दिलवाले फिल्म का सर गाना हमको सुनवा दीजिए।

0: नमस्कार, ऑन एयर फरमाइश में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सर, नमस्कार
0: जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए।
1: मैं सर बक्सर जिला से, डुमरा के पास एक औरत गांव है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ सर। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन खैर ना लगता है, लेकिन प्रोग्राम पूरा सुनता हूँ।
0: क्या शुभ नाम हुआ आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है सर, मैं एक्सपीरियंस से रिटायर हूँ
0: जी। जी तो रेडियो बहुत पहले से ही सुन रहे हैं, इसका मतलब?
1: हाँ, रेडियो सर हमारी, देखिए 66 में भर्ती हुए थे, 68 से रेडियो हमारी दोस्त है।
0: अच्छा।
1: हाँ, रेडियो में 11 बजे तक सुनता हूँ, कहीं भी रहा रेडियो फिक्स रखा। और यही हमारा दोस्त बहुत अच्छा है,
0: दोस्ती निभ रही है बहुत अच्छे से।
1: अभी तक तो नहीं रहे सर, आगे क्या होगा ईश्वर जाने, खुदा जाने।
0: हाँ चलिए, आप जब तक रेडियो को नहीं छोड़ेंगे, रेडियो कैसे आपको छोड़ेगा?
1: ना तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं
0: जी।
1: अब नया रेडियो मंगा लिया हूँ।
0: अच्छा, रेडियो सेट पर ही सुनते हैं कार्यक्रम?
1: हाँ, रेडियो के प्रोग्राम टीवी नहीं देखते, हमको टीवी पसंद नहीं आता सर, क्या अपना अपना मन है।
0: हाँ, रेडियो सुनने वाले श्रोता को टीवी वैसे भी जमता नहीं है, और
1: ना सर
0: टीवी में आपको बैठना पड़ता है एक जगह, हाँ,
1: बैठना नहीं
0: आपका
1: पड़ता
0: पूरा
1: सर,
0: समय ले
1: ऐसी
0: लेता है वो।
1: बातें उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जैसा तैसा दिखा देते हैं और भाषण दे देते हैं, लेकिन रेडियो है जो, रेडियो जो है तो एक्चुअल एक असली है, नकली होता है ना,
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: होगा एकदम सही होगा।
0: सही कहा आपने।
1: में रेडियो हमारा प्यारा है
0: तो रेडियो की विश्वसनीयता बनी हुई है हम श्रोता के।

0: इस बात पर
1: होने रहेगा
0: एतबार
1: सर,
0: रखते
1: होने
0: हैं
1: रहेगा
0: और भरोसा है उनका, हमें बहुत खुशी है। हम आभार भी व्यक्त
1: सर,
0: करते हैं आपके प्रति, सारे श्रोताओं के प्रति। तो
1: सर
0: आपने
1: धन्यवाद
0: जी, आपने फोन किया है, क्या मन बन रहा है, क्या सुनना चाहते हैं?
1: सर। मैं एक बार और लगाया था लेकिन वो गाना मेरा नहीं आया, खैर छोड़िए, अब इसका लगा दी, हमारा सुना दीजिए। क्रांति फिल्म का एक है, जिंदगी के ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो भरी दो घड़ी।

0: हेलो, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: हम बक्सर बिहार से बोल रहे हैं सर, नदाव गांव से, अनिल कुमार यादव सर।
1: अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं?
0: जी सर, अभी तो हम थोड़ा गार्ड का काम करते हैं।
1: आसपास ही हैं या कि कहीं दूर जॉब है आपका?
0: 3 किलोमीटर है सर घर से।
1: ठीक ठाक है सब कुछ?
0: जी सर,
1: ये काम जो है नया है या कि बहुत लंबे समय से कर रहे हैं?
0: इनवॉइस से कर रहे हैं सर।
1: अच्छा, ठीक लग रहा है आपको?
0: जी सर, ठीक है।
1: अच्छा, अब रेडियो के बारे में थोड़ी बताएं, जानकारी दें।
0: सर हम बराबर सुनते रहते हैं आपका कार्यक्रम।
1: अच्छा, मोबाइल पर सुन?
0: मोबाइल पर सर अभी फिलहाल में सुनते हैं, पहले रेडियो रख लेते लेकिन अब मोबाइल पर ही सुनते हैं। हालांकि 2 महीना साल बाद पहले बार का मोबाइल रख लेते सर, लेकिन फिर क्या हुआ कि उससे भी मिला गया यूट्यूब देखते देखते, तो फिर आकाशवाणी यही से आ रहा है। आकाशवाणी से ही हम सुनते हैं ज्यादा, मतलब सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको?
0: जी सर, हम रात में भी सर सुनते हैं, रात में पूरा 11 बजे के बाद भी आता है सर, वही सुनते हैं।
1: सोते कब है फिर?
0: सर मान लेते हैं जैसे नींद नींद टूट जाता है तो फिर सुनना चालू कर देते हैं।
1: अच्छा, या कभी नाइट ड्यूटी रही आपकी तो सुनते हैं?
0: जी सर,
1: बढ़िया। तो चलिए, रेडियो के साथ लगाव बना रहे, बहुत अच्छा है। और कुछ विशेष बताएं अगर बताना चाहें तो?
0: अब सर कुछ विशेष तो नहीं है सर, हमको एक गाना सुनना था, सुनवा दीजिएगा।
1: बताइए।
0: फिल्म का नाम तो नहीं याद है लेकिन गाने के बोल है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

0: ऑन एयर फरमाइश में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं सर, जिला समस्तीपुर सारंजन प्रखंड वार्ड नंबर 6 से।
0: क्या नाम हुआ आपका?
1: मेरा नाम सुजीत पासवान।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, अपना बताइए।
0: बहुत बढ़िया, हम भी हैं।
1: हम भी बढ़िया है ना?
0: एकदम बढ़िया
1: जी, बढ़िया रहना चाहिए
0: जी, बिल्कुल रहना चाहिए। और जब सब कुछ बढ़िया रहेगा तभी सब कुछ बढ़िया दिखेगा भी
1: जी सर जी।
0: जी। धीरे धीरे सबको प्रयास करना चाहिए कि बेहतर और बेहतर करते रहें।
1: बहुत
0: तो
1: हाँ।
0: आप क्या करते हैं?
1: हम दृष्टि बाधित हैं सर।
0: कोई बात नहीं, अगर ये कुछ बढ़िया नहीं है तो फिर कोई और बढ़िया अवसर भी हो गया आपके पास। क्या वैसे करते हैं, कुछ बताइए अगर करते हैं तो, या कोई शौक है तो।
1: मेरा तो ये संगीत से रुचि है
0: जी तो गाना बजाना तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। कुछ करते भी हैं गाना बजाना या के ऐसा ही बस रुचि रखते हैं?
1: गाते हैं।
0: मतलब प्रोफेशनली गाते हैं या के बस ऐसा ही गाते हैं और अपना मन बहलाते हैं?
1: मैं ये रोली रोली पे मतलब ऑर्केस्ट्रा से।
0: किसी से जुड़े हैं, संस्था वगैरह से?
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तब तो ठीक है, आपका समय भी अच्छे से बीतेगा, आमदनी भी होगी और सामान्य जीवन आप जी पाएंगे अच्छे से। बहुत अच्छा है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए संगीत सबसे मुफीद जरिया है जीवन जीने का, उनको आत्मिक शांति भी मिलती है। फिर आप बताइए, रेडियो से भी लगाव है आपको, आप रेडियो सुनते हैं, आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज सुनवा दीजिएगा हीरो नंबर 1 फिल्म का गाना, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।

0: फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश में आज बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22-50। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22-50। और अब कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ऑन एयर फरमाइश।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं अरुण कुमार अकेला। इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर निखिल राज, ढोलक पर अशोक कुमार, बांसुरी पर है मोहम्मद सलीम, कंसी पर राजन दास।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। कलाकार थे अरुण कुमार अकेला, संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर निखिल राज, ढोलक पर अशोक कुमार, बांसुरी पर मोहम्मद सलीम और कंसी पर राजन दास।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घरनी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: घरनी कार्यक्रम में सभी श्रोता सवन और सखियन के निमिषा सिन्हा के प्रणाम। कहथिन सखी अपने सवन कैसन हथिन? अपने सवन ठीक होतीन हम आशा रखिये। और सखी ठीक रखे के बात कही त आज के महिला ठीक रहेला खुद के विकास के संग अपन परिवार के विकास राष्ट्र के विकास में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहल थी।

वो आज सक्षम हथिन, सशक्त हथिन और सफल हथिन। लेकिन आज की महिला लोगिन पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई थी। उनका पे दो गुना जिम्मेदारी आ गई है। जे महिला कामकाजी हथिन उनका के भोरे उठते के संग दफ्तर के तैयारी और घर के काम दोनों के संभाले पड़े है। वहीं जे गृहिणी हथिन उनकर दिन लैकन के स्कूल भेजे, टिफिन तैयार करे और घर के सफाई में इतना तेजी से भाग है कि अपना ला 20 मिनट भी निकाल पावे के मुश्किल होवे है। लेकिन इस सब भागदौड़ में महिला लोगिन के कई तरह के शारीरिक समस्या और तनाव के सामना करे पड़े है, जैसन कि कमर दर्द, घुटना के दर्द, अकड़न और चिड़चिड़ापन और अवसाद। इस सब के निजात पावेला योग अपने के बहुत वर्ष सहारा हो सके है, जे अपने ला बहुते फायदेमंद होवे है। योग से नया ऊर्जा मिले है और शरीर स्वस्थ रहे है और शरीर में लचीलापन आवे है। देखा, हम महिला लोग इनके जीवन कई अवस्था से गुजरे है, किशोरावस्था, गर्भावस्था और रजोनिर्वृति। और इस अवस्था में शरीर में हार्मोनल के बदलाव होवे है और योग इस सब परिवर्तन के दौरान शारीरिक शक्ति बना के रखे में, तनाव कम करे में और भावनात्मक संतुलन निश्चित करे में मदद करे है। योग से शरीर तो लचीला तो होवे करे है, संगे संगे मन के भी शांति मिले है। लेकिन ज्यादातर सखी यह सोच हथिन कि जब घर के काम करे में इतना भागदौड़ हो जाए तो योग या अलग से कसरत करे के का जरूरत है। लेकिन देखथिन घर के काम करे और योग करे में बहुते अंतर होवे है। जैसा कि घर के काम झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोवे के, खाना बनावे के, इस सब में शारीरिक श्रम तो होवे है, लेकिन इसे शरीर थक जाए और मांसपेशी अकड़ जाए और हमनी के थकान महसूस होवे है। जबकि योग करे से शरीर में ऊर्जा के संचार होवे है, ई रक्त के संचार निमन करे है, जेकरा से दिन भर के थकान दूर हो जाए, शरीर में वापस से स्फूर्ति मिल जाए, मतलब कि फिर से तरोताजा हो जाए। और घर के ज्यादातर काम झुक के होवे है, जैसन कि पोछा लगावे के, सब्जी काटे के या भारी सामान उठावे के। ई सब में लगातार हमनी सब गलत पोस्चर में काम करे ही, इसे पीठ दर्द, कमर के दर्द, गर्दन में दर्द के समस्या होवे के खतरा है। जबकि योग के आसन जैसन कि ताड़ासन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, ये सब रीढ़ के हड्डी के सीधा करे है, लचीला बनावे है, जेकरा से अपने के पोस्चर ठीक होवे है और कमर दर्द में भी राहत मिल जाए है। घर के काम में सही के कुछ खास हिस्सा पे ही बार बार जोर पड़ है, जैसन कि हाथ में, कमर पे या गोड़ में, ये एक तरफा खिंचाव होवे है, जेकरा से जोड़ों में दर्द बढ़े और दबाव बढ़े। जबकि योग एगो समान व्यायाम होवे है, ये शरीर के हर छोट बड़ मांसपेशी के सही तरीका से स्ट्रेच यानी कि खिंचाव करे है, जेकरा से जोड़ों के दर्द ना होवे है। और घर के काम घड़ी जब हमने सब करे ही तो दिमाग में घर के काम की लिस्ट बनते रहे, ई काम के बाद ई काम तो ई काम के बाद ई, इसे शारीरिक तनाव के संगे संगे हमने के मानसिक तनाव भी बढ़े है। और योग खाली शरीर के ही ना मन के भी व्यायाम होवे है, जैसन कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान, जैसन योग अगर अपने कर हथिन तो दिमाग शांत होवे है, चिंता कम होवे है और नींद भी बढ़िया आवे है। आ महिला लोगिन ला कुछ खास योग जो होवे है बहुते फायदेमंद होवे है, जैसन कि वध्य कोणासन, जेकरा के बटरफ्लाई पोज भी कहल जाए है, ई पेडू में रक्त संचार के बढ़ावे है, जेकरा से मासिक धर्म के दर्द ऐठन से राहत मिले है। भुंजागासन, कोबरा पोज, ई रीढ़ के हड्डी के लचीला बनावे है और तनाव और चिंता के दूर करे में सहायक होवे है। मलासन, जेकरा के गार्लैंड पोज भी कहल जाए है, ई प्रजनन अंग के स्वास्थ्य में सुधार लावे है और हिप्स या जांग के मांसपेशी के मजबूत बनावे है। बालासन, जेकरा के चाइल्ड्स पोज भी कहल जाए है, ई पीठ, कंधा, गर्दन के तनाव के शांत करे है, जेकरा से मानसिक शांति मिले है। और हाँ,

योग के फायदा तभी हो सके ही जब अपने सही तरीका से करथिन। इला अपने प्रमाणित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही शुरुआत करथिन ताकि सही आसन सीख सकथिन। और सबसे जरूरी कि अपने ये ध्यान देथिन कि गर्भावस्था के दौरान खास करके पेट पर दबाव डाले वाला आसन ना करथिन। एकरा के हमेशा कोई योग विशेषज्ञ के देखरेख में ही करथिन। मासिक धर्म, तेज बुखार या तुरंत खाना खाए के बाद ज्यादा भारी योग मतलब कठिन योग से बचे के चाहिए। अपन शारीरिक क्षमता पे भी ध्यान देथिन, जितना हो सके उतना ही करथिन, धीरे धीरे अभ्यास के बढ़ाथिन। और इतना याद रखथिन कि अपने परिवार का इंजन के समान हथिन। अगर स्वस्थ अपने के इंजन रहते तो अपने के परिवार भी स्वस्थ रहते। तो खुद ला 15 से 20 मिनट निकालथिन और योग करथिन और अपन सुंदरता, ताकत और ऊर्जा शक्ति के बढ़ाथिन। तो योग करथिन और निरोग रहथिन। और अपने के आज कार्यक्रम में शुरुआत कर रही है देवी गीत से। आज के कलाकार हथिन वंदना कुमारी। तो सुनती इनका से एक गीत।

0: বাহ, বন্যাকুমারী সে ই দেবী গীত বহুতে নিমন আর মধুর স্বর মে ইনকা ই গীত রহল, তিনকা কে ই গীত লা বহুতে বহুতে ধন্যবাদ। আর সখি দেখা, হামনি কে কোই ভি সংস্কার রহে, চাহে শাদি রহে, ব্যাহ রহে, হামনি কে ছট্টি রহে, মুন্ডন রহে, সব মে হামনি কে গীত না দেবে। আর ব্যাহ মে তো খাসে করকে গীত রহে, লেকিন কোই ভি গীত তবি আচ্ছা লাগে যে উসব সহি সময় পে সহি সংস্কার হো। জেসে কি আগর হামনি কে বাল বিবাহ রহে আর ওমে গীত না ধো, তো ও যে বিবাহ রহে ও হামনি কে মহত্ব না রখে, কাহে কি লড়কা রহে ইয়া লড়কি আগর কম উমে বিয়াহল যায় তো উনকা জীবন হমেশা অন্ধকার মে হি চল যায়। তো একরা সে কাকা প্রভাব উনকা জীবন পে পড়ে হে, একরে সে জুড়ল এগো বার্তা লেলি হে। বার্তা কে বিষয় হই বাল বিবাহ এবং ইসকা প্রভাব। বার্তাকার হথিন ন্যান্সি ঝা, তো শুনথিন ইনকা সে ই বার্তা।
1: आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो आज भी हमारे समाज की जड़ों में कहीं ना कहीं छिपा है, जो है बाल विवाह। बाल विवाह केवल एक रस्म नहीं है, यह एक बच्चे के सपनों, शिक्षा और भविष्य पर लगाया गया ताला है। जब कोई बच्ची गुड़ियों से खेलने की उम्र में घर गृहस्थी का बोझ उठाने को मजबूर हो जाती है तो यह सिर्फ उसका नहीं पूरे समाज का नुकसान होता है। आज भी हमारे देश में कई लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले मां बन जाती हैं। कम उम्र में विवाह के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम बहुत गहरे होते हैं। कम उम्र में गर्भधारण से स्वास्थ्य संबंधी खतरे, शिक्षा अधूरा रह जाना, आत्मनिर्भर बनने के अवसरों की कमी, घरेलू हिंसा और शोषण का बढ़ता जोखिम, और सबसे दुखद बात एक बच्चा बच्चा ही नहीं रह पाता। भारत में कानून साफ कहता है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले और लड़के की 21 साल से पहले नहीं हो सकती, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में हर तीसरी लड़की 18 साल से पहले शादी के बंधन में बंध जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खासकर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो सवाल ये है, जब कानून है तो बाल विवाह आज भी क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और गरीबी। बाल विवाह का सबसे पहला और गहरा असर पड़ता है शिक्षा पर। आंकड़े बताते हैं कि जो लड़कियां कम उम्र में शादी कर लेती हैं, उनमें से ज्यादातर कभी स्कूल वापस नहीं जा पाती। लड़के भी जल्दी कमाने की जिम्मेदारी में फंस जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब पढ़ाई रुकती है तभी गरीबी चलती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो बाल विवाह का सबसे खतरनाक पहलू है। कम उम्र में शादी और फिर जल्दी गर्भधारण लड़कियों के शरीर के लिए बेहद जोखिम भरा होता है। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों में एनीमिया, कमजोरी, प्रसव के दौरान जटिलताएं और मातृ मृत्यु का खतरा कहीं ज्यादा होता है। बच्चे भी कई बार कम वजन या कमजोर पैदा होते हैं। यह सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर बोझ बन जाती है। एक गलत फैसला पीढ़ियों को कमजोर बना सकता है। बाल विवाह शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे दोस्त बनाते हैं, खुद को पहचानते हैं, उसी उम्र में अगर उन पर पति पत्नी बनने, घर संभालने और समाज की उम्मीदों का बोझ डाल दिया जाए तो उनका मन किस हालत में होगा। कई बच्चे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, उन्हें बोलने का हक नहीं दिया जाता। और सच यही है, जिस बचपन को बोलने नहीं दिया जाता वो बड़ा होकर भी डर में जीता है। यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति 2009 रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग

की भारत की 47% महिलाएं कानूनी रूप से मान्य आयु सीमा 18 वर्ष से कम आयु में ब्याही गईं, जिसमें 56% ग्रामीण क्षेत्रों से थी। यूनिसेफ के अनुसार विश्व के बाल विवाहों में से 40% भारत में होते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल विवाह की दर धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार लड़कियों में बाल विवाह की दर लगभग 69% और लड़कों में 72% तक कमी आई है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले कानून को सख्ती से लागू करना, बाल विवाह कराने पर दंड देना और जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। कई योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बच्चियों की शिक्षा और सशक्तिकरण में मदद करती है। सामाजिक जागरूकता के लिए स्कूलों में पोस्टर, स्लोगन लेखन, कार्यशालाएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ सरकार के कदम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे समाज को इसके लिए जागरूक होना होगा। समाज का योगदान बाल विवाह रोकने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब परिवार, पड़ोसी, गांव या मोहल्ले के लोग जागरूक होते हैं और बाल विवाह के खिलाफ खड़े होते हैं, तो यह बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। समाज की मदद से कानून को भी सही मायने में लागू किया जा सकता है, और यदि समाज ही मदद करने में लापरवाही बरतेगी तो समाज के साथ साथ देश के स्तर पे भी नुकसान होगा। अब अगर हम समाज और देश के स्तर पे सोचें, तो बाल विवाह का नुकसान और भी बड़ा दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहला नुकसान होता है अशिक्षित समाज का बनना। जब बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो समाज में ऐसे युवा बढ़ते हैं जिनके पास न ज्ञान होता है न कौशल। नतीजा यह होता है कि समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, लोग कम मजदूरी वाले कामों में फंस जाते हैं और गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां शिक्षा नहीं वहां विकल्प भी नहीं होते। दूसरा बड़ा नुकसान होता है गरीबी का चक्र। बाल विवाह अक्सर गरीब परिवारों में होता है, लेकिन यही बाल विवाह आगे चलकर उस परिवार को और गरीब बना देता है। कम पढ़े लिखे माता पिता कम कमाते हैं, उनके बच्चे भी वही हाल झेलते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चे भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और इस तरह गरीबी कभी खत्म नहीं होती। और सच यही है, बाल विवाह गरीबी को खत्म नहीं करता, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। तीसरा नुकसान होता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव। कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को ज्यादा मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ती है। कमजोर बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है और समाज के संसाधन सिर्फ बीमारियां संभालने में लग जाते हैं, विकास में नहीं। एक गलत सामाजिक फैसला पूरे सिस्टम को कमजोर बना देता है। बाल विवाह समाज में लैंगिक असमानता को भी बढ़ाता है। जब लड़कियों को कम उम्र में शादी के लिए मजबूर किया जाता है, तो साफ संदेश जाता है कि उनकी जिंदगी के फैसले उनके हाथ में नहीं है। इससे समाज में यह सोच मजबूत होती है कि लड़कियां बराबरी की हकदार नहीं है। और फिर ऐसे में जो समाज आधी आबादी को पीछे रखता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक और गंभीर नुकसान है घरेलू हिंसा और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। कम उम्र में शादी करने वाले बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, जिससे रिश्तों में झगड़े, गलत फहमियां और हिंसा बढ़ती है। इसका असर सिर्फ घर के अंदर नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में अस्थिरता पैदा करता है। जब रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तो समाज भी कमजोर होता है। बाल विवाह समाज में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को भी बढ़ाता है। कम उम्र में शादी का मतलब होता है लंबा प्रजनन काल,

0: इससे परिवार बड़े होते हैं लेकिन संसाधन सीमित रहती है। नतीजा बेरोजगारी, गरीबी और संघर्ष। जनसंख्या बढ़ती है लेकिन गुणवत्ता घटती जाती है। बाल विवाह का एक नुकसान यह भी है कि इससे समाज में कानून के प्रति अविश्वास बढ़ता है। जब लोग खुलेआम कानून तोड़ते हैं और कुछ नहीं होता तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा कानून से उठ जाता है। इससे अराजकता बढ़ती है और गलत परंपराएं और मजबूत होती हैं। जब कानून मजाक बन जाए तो समाज खतरे में पड़ जाता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है समाज की सोच का पिछड़ा रह जाना। बाल विवाह आधुनिक सोच, समानता और विकास के खिलाफ है। जब समाज नई सोच को अपनाने से इनकार करता है तो वो समय के साथ पीछे हट जाता है और जो समाज बदलने से डरता है वो इतिहास बन जाता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बाल विवाह सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं है, ये पूरे समाज के भविष्य का फैसला है। अगर हमें एक शिक्षित, स्वस्थ और मजबूत समाज चाहिए तो हमें बाल विवाह को सिर्फ गलत नहीं अस्वीकार मानना होगा। अंत में मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहूंगी, बच्चे कोई जिम्मेदारी नहीं होते जिन्हें जल्दी निपटा दिया जाए। वे सपनों से भरे इंसान होते हैं, उन्हें शादी नहीं समय चाहिए, उन्हें डर नहीं भरोसा चाहिए, उन्हें चुप्पी नहीं सुनवाई चाहिए।
1: अभी हमने सब सुन रही हल वार्ता। वार्ता का विषय हले बाल विवाह एवं इसका प्रभाव। वार्ता कर रहा थी नैन्सी झा। देखा कितना नीमन से बदल थी कि बाल विवाह हमने के जीवन में लेकिन के पढ़ावे ना लिखावे से कितना प्रभाव डाले है। तो बच्चों के पढ़ावे के लेथिन रहा और बंद करथिन ई बाल विवाह। तो ई वार्ता ला नैन्सी झा के बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इतनी उपयोगी वार्ता होले तो कहने को नीमन सा गीत तो सुनथिन ई झूमर गीत वंदना कुमारी से।

0: अपने सुन रहे थी वंदना कुमारी से ई झूमर गीत। तो इनका के ई गीत ला बहुते बहुते धन्यवाद। और सखी गर्मी बढ़ रही और ई तपल गर्मी में शरीर के ठंडा रखे ला बहुत जरूरी है। और शरीर के ठंडा रखे में पुदीना के पत्ता बहुते उपयोगी मानल जाए है। कहे कि पुदीना के तासीर ठंडा होवे है और ई अपन अनोखा स्वाद ला जान जाए। एकर खुशबू से कोईयो साधारण व्यंजन के स्वाद के दुगुना कर जा सके है। और गर्मी के मौसम में एकर खाए अपने खाना खाए के बाद या धूपा से आवे के बाद एक पत्ता से बनल छाछ पेट के तुरंत ठंडा करे है। तो अपने के छाछ बनावे के आज विधि बता रही है। एकर बनावेला सामग्री है 1 कप ताजा दही, 15 से 20 पुदीना के पत्ता, आधा चम्मच भुनल जीरा के पाउडर, काला नमक स्वाद के अनुसार और ठंडा पानी। बनावे के तरीका अपने समझ लेथिन। मिक्सी के जार में पुदीना के पत्ता, दही, जीरा, काला नमक और थोड़ा सा पानी डाल के पहले नीमन से पीस लेथिन। फिर जार से एकरा के निकाल के जरूरत भर ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़ा मिला के पुदीना का पत्ता डाल के ठंडा ठंडा पेश करथिन। ई पे अपने के लेकन के और अपने ला और अपने के परिवार ला बहुत फायदेमंद है। और ई गर्मी में पुदीना और धनिया के चटनी भी बहुत स्वादिष्ट होवे। जेकरा अपने चटनी के समोसा, कचौड़ी, सैंडविच या रोज के दाल चावल में खा सकथिन और एकरा में स्वाद बढ़ा सकथिन। एकरा सामग्री लिख लेथिन। 1 कप धनिया के पुदीना के पत्ता, 1 कप हरा धनिया, 2 से 3 हरा मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा आदि के, 1 चम्मच नींबू के रस, नीमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा। बनावे के तरीका है सभी सामग्री के मिक्सी में के जार में थोड़ा सा पानी डाल के महीन पीस लेथिन और अंत में नींबू के रस मिलाथिन। नींबू के रस चटनी के हरे रंग के बना के रखे और स्वाद भी बढ़ावे। तो ई चटनी के संग अपने गर्मी के मजा लेथिन और स्वस्थ रहथिन। और अपन निमिषा बहन के देथिन विदा। प्रणाम।
1: ये था ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। वार्ताकार हैं रंजन कुमार सिंह।
4: सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज से तात्पर्य उन सभी भौतिक कलाकृतियों, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली से है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती हैं और जिन्हें हम अगली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखते हैं। यह समाज और समुदाय को पहचान प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मूर्त सांस्कृतिक विरासत वे भौतिक वस्तुएं

और स्थान हैं जिन्हें हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्मारक और इमारतें। ये प्राचीन किला, मंदिर, मकबरा या महल हो सकते हैं। ये कलाकृतियां भी हो सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्रकला, हस्तशिल्प और प्राचीन वस्तुएं। ये पुरातत्व स्थल और पांडुलिपियां भी हो सकती हैं, जैसे ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज और पुरानी पुस्तकें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत वे पहलू आते हैं जो भौतिक नहीं होते, लेकिन पीढ़ियों से मौखिक या व्यवहारिक रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। ये किसी समुदाय की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस प्रकार की विरासत लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ाव करने में मदद करती हैं और परंपराओं को रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित रखती हैं। स्मारकों और कलाकृतियों के विपरीत, यह लोगों की स्मृतियों, कौशलों और साझा अनुभवों में विद्यमान होती हैं, जो इसे मानव संस्कृति का एक मूल्यवान और गतिशील हिस्सा बनाती हैं। सांस्कृतिक विरासत से सामाजिक एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। त्यौहार, अनुष्ठान और सामुदायिक प्रथाएं लोगों को एक साथ लाती हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और आपसी सहयोग बढ़ता है। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण से पारंपरिक चिकित्सा, कृषि पद्धति और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के कौशल सुरक्षित रहते हैं। पारंपरिक कला, संगीत और हस्तशिल्प पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद व सहिष्णुता को प्रोत्साहित करती हैं। भारत की समृद्ध अमूर्त विरासत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने भारत की 16 प्रमुख परंपराओं को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ये परंपराएं देश की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और विविधता को दर्शाती हैं। पहला, कुटियाट्टम। कुटियाट्टम भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, जिसका इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसका प्रदर्शन कुटमपल्लम नामक मंदिर थिएटरों में किया जाता है। यह कला शैली शास्त्रीय संस्कृत नाटक और केरल की स्थानीय परंपराओं का संगम है। अभिनय शैली अत्यंत भावपूर्ण होती है, विशेष रूप से नेत्र अभिनय और हस्त अभिनय के माध्यम से गहन भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा है। इसमें वेदों का मौखिक प्रसारण शामिल है, जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भजन, प्रार्थनाएं और दार्शनिक विचार शामिल हैं। इस परंपरा की विशिष्टता यह है कि पुरोहितों द्वारा मंत्रों को सटीक रूप से याद किया जाता है और पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। रामलीला, यह रामायण का एक पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन है, जो भगवान राम के जीवन की कहानी, विशेष रूप से रावण के साथ उनके युद्ध को बयां करता है। यह उत्तर भारत में दशहरा के दौरान आयोजित किया जाता है। इस प्रदर्शन में गीत, संवाद, कथा वाचन और अभिनय शामिल होते हैं। यह कई दिनों तक चलता है। इसमें भाग लेने एवं देखने हेतु पूरा समुदाय एक साथ जमा होता है, जिससे यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी बन जाता है। दिल्ली, अयोध्या और वाराणसी जैसे जगहों पर प्रसिद्ध रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं। राम मन उत्तराखंड, यह उत्तराखंड के सालूर डुंगरा गांव में मनाया जाने वाला एक अनूठा धार्मिक त्यौहार है। यह स्थानीय देवता भूमियाल देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार में अनुष्ठान, कथा प्रस्तुति, मुखौटा नृत्य और संगीत का मिश्रण होता है। छऊ नृत्य, छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें नृत्य, नाटक और मार्शल आर्ट के तत्व समाहित है। यह नृत्य अक्सर महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के साथ साथ स्थानीय लोक कथाओं की कहानियों को भी दर्शाता है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, यह राजस्थान के कालबेलिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य एवं संगीत में सांपों के साथ उनका गहरा संबंध झलकता है। महिलाएं कढ़ाई और दर्पणों से सजी काली स्कर्ट पहनती हैं, जबकि पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र

बजाते हैं। मुदियट्टू, मुदियट्टू केरल में देवी काली को समर्पित मंदिरों में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है। यह देवी काली और राक्षस द्वारिका के बीच युद्ध की कहानी बयां करता है। बौद्ध मंत्रोच्चार, लद्दाख में बौद्ध भिक्षु मठों और गांवों में पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। ये पाठ बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और धार्मिक समारोहों और महत्वपूर्ण अवसरों पर किए जाते हैं। पाठ के साथ ढोल, घंटियां और तुरही जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित करने और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। संकीर्तना मणिपुर, संकीर्तन एक भक्तिमय प्रस्तुति है जिसमें गायन, ढोल बजाना और नृत्य शामिल है। यह मुख्य रूप से मणिपुर की वैष्णव परंपरा से जुड़ा है और भगवान कृष्ण के जीवन और कथाओं पर केंद्रित है। त्योहारों और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। इसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि यह समुदाय के भीतर सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। पारंपरिक पीतल और तांबे की शिल्प कला, यह शिल्प पंजाब के जंडियाल गुरु के थथेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। वे पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के लिए पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में धातु को गर्म करना, हथौड़े से पीटना और उसे विभिन्न आकारों में ढालना शामिल है। फिर इन बर्तनों को प्राकृतिक सामग्रियों से पॉलिश किया जाता है। यह कौशल सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी दर्शाता है। नौरोज, नौरोज पारसियों, ज़ोरास्ट्रियन और मुसलमानों, शिया और सुनी दोनों के लिए नौ वर्ष का उत्सव है। यह अफगानिस्तान, अजरबैजान, भारत, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और भारत में भी मनाया जाता है। इस दौरान निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है टेबल के चारों ओर इकट्ठा होना, जिसे पवित्रता, चमक, आजीविका और धन का प्रतीक वस्तुओं से सजाया जाता है ताकि प्रियजनों के साथ एक विशेष भोजन का आनंद लिया जा सके। योग, योग मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करने पर आधारित है। योग में आसनों की एक श्रृंखला, ध्यान, नियंत्रित श्वास, मंत्रोच्चार और अन्य तकनीक शामिल हैं। यह शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर करने, मन शांत रहने और आत्मबल, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। योग पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें भारत के प्रयास के कारण ही दुनिया में विश्व योग दिवस की शुरुआत हो सकी। कुंभ मेला, उत्तर दुनिया में तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जिसके दौरान तीर्थयात्री पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। यह उत्सव बारी बारी से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है और इसमें लोग जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना करोड़ों लोग भाग लेते हैं। सन 2025 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में आज तक सबसे अधिक 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेता है। दुर्गा पूजा, यह एक वार्षिक उत्सव है जो हिंदू देवी माँ दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का प्रतीक है। महालया के उद्घाटन दिवस पर देवी की पूजा शुरू होती है, जब देवी को सजीव रूप देने के लिए मिट्टी की मूर्तियों पर आंखें चित्रित की जाती हैं। यह 10वें दिन समाप्त होता है, जब मूर्तियों को उस नदी में विसर्जित किया जाता है। गरबा, यह एक भक्तिमय नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर विशेषकर गुजरात में किया जाता है, जो स्त्री शक्ति या शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। यह नृत्य तेल के दीपक से रोशन एक छिद्रित मिट्टी के बर्तन या देवी अम्बा की प्रतिमा के चारों ओर किया जाता है। यह नृत्य ताली बजाते हुए, चुटकी बजाकर और लयबद्ध कदम ताल करते हुए गोलाकार रूप में घूमते हुए होता है। इसमें ढोल, ढोलक, मंजीरा और झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ताल दिया जाता है। पारंपरिक परिधान बहुत रंग बिरंगा होता है। महिलाएं काशीदकारी वाले घाघरा, चोली और बांधनी दुपट्टा पहनती हैं, जबकि पुरुष केडियां और धोती पहनते हैं। अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्ता के कारण ही गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दीपावली को भी 8 से 13 दिसंबर सन 2025 को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वां यूनेस्को अंतर सरकारी

0: समिति सत्र में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत के कुल 16 तत्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं। दीपावली भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के उपरांत उनके अयोध्या वापस लौटने तथा रावण पर उनकी विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर अयोध्या वासी ने दीपक जलाकर उनके मार्ग को प्रकाशित किया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना उन जीवित परंपराओं को मिली वैश्विक मान्यता को दर्शाता है जो सांस्कृतिक पहचान, निरंतरता और साझा मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्ति करता है। इनके अलावा भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति में लोक संगीत, कठपुतली कला, हस्तशिल्प, मौखिक साहित्य और क्षेत्रीय व्यंजन भी हमारी अमूर्त विरासत का अटूट हिस्सा हैं।
1: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता भारत की अमूर्त।

0: और क्षेत्रीय व्यंजन भी हमारी अमूर्त विरासत का अटूट हिस्सा हैं।
1: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। वार्ताकार थे रंजन कुमार सिंह।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है देशगान।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

हो हलचल हलचल हलचल हलचल। भोर हो गई सूरज की किरणें फूटी, हौले हौले हवा चली, चिड़ियों का मंडराया दल शीर्षासन कर सर के बल।

चक्रासन कर, योग के सारे आसन कर, हरकत बनी रहे हर पल, रोगों के दलदल से निकल, भोर हो गई शांत।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों को, फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

0: बस सजा है, मजा इसमें इतना।
1: लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

लीजिए सुनिए मन्ना डे को फिल्म वक्त में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि।

लिए सुनी कुमार सानू और साधना सरगम को, फिल्म का नाम है जुर्म।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक

0: सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी आज नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। श्री चौधरी ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास पिछले दिनों 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद कर उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करेगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार इस महीने के अंत तक कागजी नोटों को बंद करने या उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करने की कोई योजना नहीं है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ागाच में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک خدمت کرنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک عہدے پر فائز رہے۔ پنڈت نہرو کی منتخب وزیر اعظم کے طور پر مدت کار 4398 دنوں کا تھا۔ 26 مئی 2014 سے آج 10 جون 2014

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा

में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का

शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री

0: में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज

0: 169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में

0: अली अल सलाम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म बरसात की रात में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियां और समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज यानी 10 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-222-2500 और 0612-4026-349। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-222-2500 और 0612-4026-349। रिकॉर्डिंग की तारीख आज यानी 10 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए।

फिल्म ब्लैक मेल का ये गाना सुनिए, आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हाल चाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है, एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे
1: हजार होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या

0: तूने हाँ मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज।

0: राज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर
1: हाँ
0: कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं, पर वो
1: बिल्कुल
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान 2 लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ।
0: जी
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक, हाँ जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने 1 ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय, लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाई
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है। मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान

0: का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
1: देख
0: सकें।
1: सके
0: और जब भी
1: बिल्कुल
0: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, और साड़ी में
1: साड़ियां
0: जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
1: झलक उठता है।
0: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
1: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
0: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
1: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
0: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
1: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
0: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
1: क्या बात है,
0: मुझे शौक है तो पहनती हूँ। और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है। और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
1: क्या बात है, चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
0: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
1: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: और जैसे
1: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण है।
0: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल,
0: तो सुनते हैं गीत।

0: सुप्राली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका काम

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली

0: में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
1: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
0: हाँ, सच कहा आपने।
1: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
0: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणी अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम, धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे। और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
0: बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं, सुना लीजिए।
1: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
0: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
1: उसे करेला भी दीजिए।
0: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हाँ, हर
1: आप जो खाते
0: थोड़ी
1: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदि हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
1: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरे नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ।
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है।
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले।

0: तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये तो
0: दोस्त सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको, तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है, घर के नखरे भले ही हजारों लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को
1: ओहो।
0: बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं, कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले
1: हाँ
0: हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तो भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वह है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो, जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए, जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी-कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी-कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या
1: ये
0: फिर
1: कर लो।
0: खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं,
0: हम आए क्या
1: हाँ
0: डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो गृहणिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो और कुछ तो बोलो।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोस्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक
0: चाहिए।
1: हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का

0: गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है। फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
1: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
0: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोड़न का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे। थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमे आँच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियाँ जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
1: गीत सुने
0: तो सुनते हैं गीत।

0: आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: यानी
0: तुझे
1: कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, पर कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख
0: सूखता
1: पाता है।
0: नहीं है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा आगरकर देसाई का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से, और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली

0: भारती से
1: की स्मृतियां हैं मेरे
0: जी
1: पास।
0: जी तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे।
1: जी
0: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
1: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं,
0: जी
1: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था।
0: जी
1: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो
0: जी
1: मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं,
0: क्या बात
1: जैसे
0: है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: जी जी जी
1: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता
0: क्या
1: था।
0: बात है।
1: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था, तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
0: अरे वाह,
1: आगे देखो
0: हाँ,
1: तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे,
0: गजब।
1: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे,
0: हाँ
1: बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो
0: जी
1: या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनके जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया। और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है,
0: जी जी
1: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है,
0: जी
1: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
0: जी
1: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
0: जी
1: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
0: जी जी
1: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था,
0: अच्छा
1: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
0: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
1: कोई दूर
0: संबंध
1: दूर
0: नहीं
1: से
0: होता है। जी
1: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
0: जी जी क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
1: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
0: जी
1: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा
0: हाँ
1: तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
0: 3 पेज
1: की चिट्ठी
0: सर्वेश्वर जी
1: और हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो

0: जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने
1: लिख
0: सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई। बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूं,
1: हाँ,
0: तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो
1: कि
0: पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है, और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी।
1: हाँ,
0: और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: के
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने। हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी
0: वो एक गवैया बन जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन उसके सृजन

0: यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। ख़ास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंग कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक।
0: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी, जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है। उससे ये कविता लिखी और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी। मैंने चिट्ठी खींच ली।

0: ओ
1: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूं, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया, और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का
0: बिल्कुल
1: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया।
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है, और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा, और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी,
0: जी
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई, वो फिर मैं

0: सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा हूँगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे श्रोताओं को तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साय में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य नहीं
0: अनकहा
1: उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा
1: तो एक
0: सब।
1: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस्ट बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रफत सलीम।
1: और मैं हूं आपका साथी साजिद। आप सभी श्रोताओं का हम दिल से अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह से भरपूर होंगे।
0: दोस्तों, युवावस्था जीवन का वो दौर है जहाँ सपने भी बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला भी। युवावाणी का उद्देश्य भी युवाओं को नई जानकारी, नई सोच और नई प्रेरणा से जोड़ना है।
1: बिल्कुल रफत, और आज का हमारा कार्यक्रम भी ज्ञान, जागरूकता, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर होने वाला है। अगले कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कई खास विषय और रोचक प्रस्तुतियाँ।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। जानेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और संवाद क्यों जरूरी है और यह दिवस हमें क्या संदेश देता है।
1: और इसके बाद चर्चा होगी नशा मुक्त बिहार अभियान की। जानेंगे कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार और समाज किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं तथा युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है।
0: फिर हम बात करेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। समझेंगे कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण क्यों किसी भी समाज की प्रगति का आधार है।
1: इसके बाद होगा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, योग और युवा। जानेंगे कि योग किस प्रकार युवाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है तथा आज के तनावपूर्ण जीवन में योग का महत्व कितना बढ़ गया है।
0: और इसी कड़ी में हम निकलेंगे अपने खास सेगमेंट घूमता माइक्रोफोन के साथ। जानेंगे आम लोगों की राय और समझेंगे कि योग के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है, वे योग को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं और इससे क्या लाभ महसूस करते हैं।
1: और खेल प्रेमियों के लिए भी हमारे पास है खास पेशकश। कार्यक्रम में होगा स्पोर्ट्स अपडेट, जहां हम आपको खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों और उपलब्धियों से रूबरू कराएंगे।
0: और अगर आपको रोचक जानकारियां पसंद है तो तैयार रहिए हमारे साथ अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट के लिए, जहां हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जिन्हें आप जानकर हैरान

0: रह जाएंगे। दोस्तों, जानकारी और प्रेरणा के इस सफर में संगीत का रंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम के दौरान हम आपके लिए सुनवाते रहेंगे एक से बढ़कर एक मधुर अमन भावन गीत, जो आपके दिल को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो सुनते हैं आज का पहला ट्रैक।

0: मधुर गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर है कार्यक्रम युवावाणी लेके। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत, जिसे गाया है विशाल और शिखर ने। दोस्तों कार्यक्रम को आरंभ करते हैं एक प्रेरक पंक्ति के साथ। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो।
1: रहे समझ हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो।
0: घटा घिरी अटूट हो, अधर्म कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो।
1: गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो।
0: दोस्तों इस कविता के माध्यम से द्विवेदी जी यह प्रेरणादायक संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे किसी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी आए, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हाथ में कोई हथियार ना हो, चाहे भोजन वस्त्र ना हो, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है।
1: बिल्कुल। और कविता में हिमालय जैसी ऊंची बाधाओं, प्रलय जैसी विकट परिस्थितियां और मृत्यु तक के संकटों को झेलते हुए भी डटे रहने और निरंतर प्रगति करने की प्रेरणा दी गई है। अंत में कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता और सफलता के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए, यही सच्चे योद्धा का मार्ग है।
0: इसी के साथ सुनते हैं अपना दूसरा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथिया से ये गीत, जिसे आवाज दी है ऋचा शर्मा और महालक्ष्मी जी ने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का संदेश देता है। विषय है अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस। यह दिवस हर वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल रफत, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी हुई है। इंटरनेट, संचार और परिवहन के विकास ने देशों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं। लेकिन केवल भौतिक दूरी कम होना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यक यह भी है कि लोग एक दूसरे की संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली को समझें और उनका सम्मान करें। यही संदेश यह दिवस देता है।
0: बिल्कुल साजिद, सही कह रहे हैं आप। सभ्यता केवल इमारतों, वस्त्रों या खान पान का नाम नहीं है। सभ्यता किसी समाज के जीवन मूल्यों, ज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, नैतिकता और परंपराओं का समग्र रूप होती है। दुनिया में अनेक महान सभ्यताएं रही हैं। भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनानी सभ्यता,
1: बिल्कुल,
0: और कई अन्य भी रही हैं। इन सभी ने मानवता को कुछ न कुछ अमूल्य योगदान दिया है दोस्तों।
1: जी बिल्कुल। और जब विभिन्न सभ्यताओं के लोग आपस में संवाद करते हैं तो वे एक दूसरे के अनुभवों और ज्ञान को सीखते हैं। इससे न केवल आपसी समझ बढ़ती है बल्कि शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इतिहास गवाह है कि

0: जब जब संवाद हुआ तब तब प्रगति हुई, और जब संवाद की जगह संघर्ष ने ले ली तब विनाश हुआ।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि दुनिया में बढ़ती असहिष्णुता, भेदभाव और संघर्ष की प्रवृत्तियों को कम किया जा सके। आज भी कई स्थानों पर जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर मतभेद देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में सभ्यताओं के बीच संवाद का महत्व और बढ़ जाता है दोस्तों,
0: और भारत खुद सभ्यताओं के संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ सदियों से विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते आए हैं। यही विचार अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस की मूल भावना से मेल खाता है।
1: दोस्तों, आज का युवा इस संवाद का सबसे बड़ा वाहक बन सकता है। युवा सोशल मीडिया, शिक्षा, खेल, कला और विज्ञान के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों से जुड़ सकते हैं। यदि युवा खुले मन से दूसरों को समझने का प्रयास करें तो वे पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को तोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने रफत। और जो शिक्षा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब हम विभिन्न देशों के इतिहास, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि मानवता की मूल भावनाएं हर जगह समान है। हर व्यक्ति सम्मान, प्रेम, सुरक्षा और अवसर चाहता है। यही समानताएं हमें एक दूसरे के करीब लाती है।
1: सभ्यताओं के बीच संवाद केवल सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कार्य नहीं है श्रोताओं
0: जी,
1: यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुनते हैं, उसकी संस्कृति का सम्मान करते हैं और भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं, तब हम संवाद की भावना को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल, और आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, गरीबी, महामारी जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान किसी एक देश या सभ्यता के पास नहीं है। इसके लिए सभी देशों और संस्कृतियों को मिलकर काम करना होगा। संवाद ही सहयोग का पहला कदम है दोस्तों।
1: यह दिवस हमें यह भी सिखाता है दोस्तों कि विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं और परंपराएं हमारी दुनिया को समृद्ध बनाती है। यदि सभी लोग एक जैसे होते तो दुनिया कितनी नीरस होती।
0: बिल्कुल, और हमें यह समझना चाहिए कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेदों को संघर्षों का कारण नहीं बनने देना चाहिए। संवाद के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। बातचीत से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से शांति।
1: बिल्कुल, बातें तो हमारी और भी आगे जारी रहेगी, क्यों ना अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा ट्रैक सुनाया जाए।
0: जी बिल्कुल रफत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे, अमान मलिक की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग। अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं रफ़त, और बात करते हैं अगले विषय पर, नशा मुक्त बिहार, गौरवशाली विरासत से स्वस्थ भविष्य की ओर। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे नशा मुक्त बिहार की। बिहार का नाम सुनते ही हमारे मन में ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की एक अद्भुत तस्वीर उभरती है। यही वह धरती है जहाँ से दुनिया को बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व मिले।
1: बिल्कुल साजिद, बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्ञान के ऐसे दीप थे जहां दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बिहार ने हमेशा ज्ञान, शांति और सामाजिक सुधार का संदेश दिया है।
0: बिल्कुल रफत, इसीलिए जब हम नशा मुक्त बिहार की बात करते हैं तो यह केवल एक कानून की चर्चा नहीं होती बल्कि उस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है जिसके केंद्र में जागरूकता, शिक्षा और समाज कल्याण है।
1: बिल्कुल सही, बिहार की पहचान मेहनतकश लोगों, समृद्ध संस्कृति, लोक कलाओं, छठ महापर्व और साहित्य और सामाजिक चेतना से रही है। ऐसे में समाज को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखना एक सकारात्मक लक्ष्य माना गया है।
0: तो रफत, सबसे पहले यह बताइए कि नशा मुक्त बिहार का अर्थ क्या है?
1: नशा मुक्त बिहार का अर्थ है ऐसा समाज जहां लोग शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों से दूर रहकर स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार जीवन जिए। इसका उद्देश्य परिवारों में खुशहाली, युवाओं में जागरूकता और समाज में सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना है। बिहार का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है,

0: यह प्राचीन मगध साम्राज्य की भूमि रही है दोस्तों। सम्राट अशोक ने यहीं से शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर ने भी इसी धरती पर अपने संदेशों का प्रचार किया।
1: यही कारण है कि बिहार को ज्ञान और अध्यात्म की भूमि कहा जाता है। पर
0: बिल्कुल, बिहार की संस्कृति लोगों को संयम, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। नशा मुक्त समाज की अवधारणा भी इन्हीं मूल्यों से जुड़ी हुई है।
1: रफत, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी की प्रक्रिया शुरू की और 5 अप्रैल 2016 को राज्य में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। बाद में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया,
0: जिसका उद्देश्य राज्य में पूर्ण मद्य निषेध को लागू करना था। आखिर ऐसे पहल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
1: समाज में यह विचार सामने आया कि नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए लोगों को जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया। इस पहल का मूल उद्देश्य सामाजिक सुधार और जागरूकता था।
0: युवाओं के लिए संदेश स्पष्ट है दोस्तों कि जीवन में सफलता का मार्ग शिक्षा, कौशल, खेल, विज्ञान और परिश्रम से होकर जाता है। बिहार के युवाओं ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर विज्ञान, तकनीक, साहित्य और खेल तक हर क्षेत्र में बिहारी युवाओं ने अपनी पहचान बनाई है। यदि हम सचमुच बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता देनी होगी।
1: और हमें ये याद रखना चाहिए कि बिहार वही भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया।
0: नशा मुक्त बिहार केवल एक अभियान नहीं, बल्कि स्वस्थ और जागरूक समाज की कल्पना है। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अपना अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, भारतीय संस्कृति में बेटी को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप माना गया है। वेदों में कहा गया है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यह पंक्ति हमारी प्राचीन मान्यता की गहराई बताती है। लेकिन आज का युग विडंबनाओं का युग है। एक ओर माँ दुर्गा की आराधना, दूसरी ओर गर्भ में बेटी की हत्या। यही कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक सरकारी योजना नहीं, एक मानवीय चेतना का महायज्ञ है। यह नारा हर उस दिल की धड़कन है जो बेटी के अस्तित्व के लिए तड़पता है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने रफत। और बेटी का अर्थ केवल एक स्त्री संतान नहीं है, बेटी वह शक्ति है जो दुनिया का निर्माण करती है। बेटी वह प्रेम है जो पूरे घर को स्नेह से सींचती है। बेटी वह संकल्प है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी नहीं टूटती। इसलिए बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना केवल कर्तव्य नहीं, यह तो हमारी सभ्यता की पहचान है।
0: बेटी को बचाने का अर्थ केवल उसे जन्म देना नहीं है, इसका अर्थ है उसे हर वो अधिकार देना जो एक इंसान को मिलना चाहिए। आज लिंगानुपात का गिरता ग्राफ चिंता का विषय है। दोस्तों, 2011 की जनगणना में प्रति 1,000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां थीं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह रही। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह हजारों उन बेटियों की चुप चीख है जो पैदा होने से पहले ही मार दी गई।
1: जब लड़कियां कम होंगी तो अपराध बढ़ेंगे, महिलाओं पर अत्याचार होंगे और समाज अस्थिर हो जाएगा। वह परिवार की सुखी शांति है। एक बेटी माता पिता के बुढ़ापे की सच्ची राठी होती है। वह बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करती
0: वो
1: है।
0: अर्थव्यवस्था की धुरी है। पढ़ी लिखी बेटी जब कमाएगी तो देश की तरक्की होगी। महिला सशक्तिकरण के बिना कोई देश विकसित नहीं हो सकता। वो मानवता का गौरव है। बेटी को मारना मानवता पर कलंक है। उसे जीने का, मुस्कुराने का, सपने देखने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, बेटी को पढ़ाने का अर्थ है उसे पंख देना, आकाश देना, पूरी दुनिया देना। एक अशिक्षित बेटी परिवार पर बोझ होती है, जबकि एक शिक्षित बेटी पूरे समाज का गौरव होती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने रफत। और शिक्षा उसे इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती।

0: बल्कि दूसरों का हाथ थामती है। बुराइयों से लड़ने का साहस, शिक्षित बेटी दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाती है। वह किसी जुल्म को चुपचाप नहीं सहती है। पूरे परिवार का उत्थान, एक शिक्षित माँ के बच्चे संस्कारी, स्वस्थ और सफल होते हैं। वह पूरी पीढ़ी को ऊपर उठा लेती है।
1: राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनती है। कल्पना चावला, मैरी कॉम, सुधा मूर्ति, इंदिरा गांधी, ये सभी शिक्षित बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनके जैसी लाखों बेटियां बस एक अवसर की प्रतीक्षा में हैं। मगर पुरानी सोच भी कहीं ना कहीं आ जाती है दोस्तों, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, अंततः पराया धन है। यह जहरीली सोच अभी भी हजारों घरों में जिंदा है। मगर हमारा संकल्प अब होना चाहिए, अब हर बेटी की उड़ान हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बना सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, थोड़ा सा संकल्प चाहिए।
1: हर स्कूल लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सेल्फ डिफेंस क्लास और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें। हर सरकारी अधिकारी PNDT कानून को सख्ती से लागू करें, बाल विवाह रोके और लड़कियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाए।
0: वह दिन दूर नहीं जब हर बेटी न सिर्फ पढ़ेगी बल्कि पढ़ाकर दुनिया बदलेगी। जब हर बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, प्रधानमंत्री बनेगी। जब हर बेटी के कदमों में सपने होंगे, हाथों में किताबें होंगी और आंखों में चमक होगी।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है दोस्तों। यह केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर पिता का, हर माता का, हर भाई का, हर शिक्षक का, हर पड़ोसी का, हर नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों। इसी के साथ सुनते हैं अपना अगला ट्रैक।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों आज है बुधवार और बुधवार को हम निकलते हैं अपना माइक्रोफोन लेकर। तो आज दोस्तों हम अपने माइक्रोफोन को घुमाते हैं जागरूक नागरिक की तरफ और जानते हैं योग के बारे में वो कितना जानते हैं।
4: आपका शुभ नाम क्या हुआ?
5: मेरा नाम शहरयार खान है।
4: अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ योग से रिलेटेड। 21 तारीख को योगा दिवस आने वाला है, तो आप मेरे सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे?
5: जी जरूर।
4: अच्छा, तो आप बता सकते हैं मुझे कि योग के क्या फायदे हैं? आप करते नहीं करते हैं और इसका थोड़ा फायदा भी बताएं।
5: जी मैं जरूर बताता हूँ। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके कुछ फायदे हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। योग शारीरिक लचीलापन, ताकत और संतुलन में सुधार करता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों को लचीला बनाता है। मानसिक शांति भी बनाए रखता है। योग मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तीसरा, तनाव मुक्ति होती है। योग तनाव को कम करने में मदद करता है और शरीर को आराम देता है। यह तनावपूर्ण जीवन में शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। चौथा, नींद की गुणवत्ता में सुधार होती है। योग नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह शरीर और मन को आराम देता है जिससे अच्छी नींद आती है।
4: अच्छा, आप योग करते हैं क्या डेली?
5: जी मैं रोज करता हूँ।
4: अच्छा, तो योग का मतलब कि कौन सा समय आपने फिक्स किया है, या आपके लिए आपके नजर में कौन सा योग का समय अच्छा है?
5: मेरे नजर में योग का समय सबसे अच्छा सुबह का समय है, जब हम सो के उठते हैं उस वक्त का।
4: जी, शाम में भी तो लोग करते हैं ना, शाम में भी किया जा सकता है।
5: जी शाम में भी किया जा सकता है, मगर सुबह का जो ताजी हवा होती है उसकी भी हमें मजा मिल जाता है।
4: जी ये तो बात आपने सही कहा, सुबह का मजा ही अलग होता है। सुबह की चहचहाहट, सूरज की लालिमा ही अद्भुत होती है।
5: जी
4: जी, आप क्या संकल्प लेंगे योग के लिए अभी जो 21 तारीख

0: को आने वाला है योग दिवस, तो उसके लिए आपका कोई संकल्प है, या आप कोई मोटिवेट करेंगे अपने दोस्तों को इसके लिए कि योग
1: हाँ,
0: दिवस?
1: मैं अपने दोस्तों को इसके लिए प्रेरित करूंगा कि वो लोग भी रोज योगा करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप शुभ नाम क्या हुआ?
3: रमेश कुमार मिश्र।
2: आप थोड़ा सा समय देंगे मुझे?
3: जरूर जरूर
2: जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं?
3: योग हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही

0: और तीसरा है मध्य युग और चौथा है वर्तमान युग। तो ये योग हमारे यहाँ शुरू से ही लोग करते आ रहे हैं और पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और आधुनिक काल में तो इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि लोग तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, तो तनाव मुक्त होने के लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है और इसे आदमी को बहुत समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।
1: आप एक और छोटा सा सवाल है सर, सर क्या आप डेली योग करते हैं?
0: हाँ, कुछ तो योग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है या श्वास लेना छोड़ना, ये सब हम प्रतिदिन करते हैं और उसका लाभ हमें मिल रहा है।
1: आप अपने जीवन में भी इसका लाभ देख रहे हैं?
0: यस यस, जरूर जरूर।
1: आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग करें, क्योंकि कहा गया है कि प्रथम सुख हो स्वस्थ काया, तो स्वस्थ काया के लिए जरूरी है कि हम योग को अपनाएं और अपने ये बहुमूल्य जीवन को बहुमूल्य बनाएं, इसका महत्व समझें। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए हमें। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ?
2: नमस्ते, मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं 21 वर्ष का हूँ।
1: जी नमस्कार, आप योग के बारे में कुछ जानते हैं?
2: जी मैं योग के बारे में जानता भी हूँ और करता भी हूँ।
1: जी तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा हमें भी बताइए योग के बारे में आप।
2: योग से मेरा जो जुड़ाव है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सभी लोगों से। मैं एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे जो योग की शिक्षा और योग को जानने का जो अवसर प्राप्त हुआ वो संगीत के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो प्रायः जब मैं संगीत का अभ्यास करता हूँ तो योग से ही शुरू होता है, क्योंकि संगीत साधना है और साधना का शुरुआत योग से, और योग भी एक साधना है, तो ये दोनों बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण योग बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है मेरे से, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
1: अच्छा, दैनिक जीवन में आप कितना समय देते हैं योग को?
2: ऐसे योग बहुत ज्यादा दैनिक जीवन में मैं प्रायः जब मेरी जो सुबह की दिनचर्या की शुरुआत होती है वो योग से ही होती है, और जो दिन का सायंकाल होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, तो मैं संगीत का विद्यार्थी होने के कारण ज्यादा खेल कूद शारीरिक ज्यादा व्यायाम नहीं कर सकता, तो उस समय जो योग के आसन हो गए जैसे चंद्रासन हो गया, सिरासन हो गया, और ये सारे चीजें उस समय करने का मुझे वक्त मिल पाता है, तो इसलिए मैं मतलब दिन भर योग तो लगभग जुड़ा ही रहता है, सुबह शाम तो ऐसा रहता है।
1: अच्छा, योग के लिए आप युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज होगा आज के युवाओं के लिए?
2: मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आजकल के जो युवा हैं उन्हें तो बिल्कुल ऐसा योग तो करना ही चाहिए, क्योंकि योग अभी के जो युवा हैं वो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो मेरे अनुसार जैसे वो हर चीज को एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं वैसे योग को एक बार जरूर उन्हें ट्राई करके देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल पाए कि योग
1: लग जाएगी।
2: एग्जैक्टली,
1: क्योंकि उनको भी अपने दैनिक जीवन में इसका फायदा दिखने लगेगा तो वो खुद ही करने लग जाएंगे।
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा मोटिवेशनल है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम अंकिता शर्मा हुआ।
1: अच्छा, आप बता सकती हैं हमको योग क्या है या आप योग के बारे में क्या क्या जानती हैं, थोड़ा ब्रीफली मतलब ये शॉर्ट में बता दीजिए।
3: वैसे योग के बारे में कहें तो ये तो एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो कि शारीरिक मानसिक या फिर आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये व्यापक प्रणाली है, और इसमें मतलब कि आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, मतलब यही सब अभ्यास इसमें शामिल होता है। वैसे योग का मतलब जुड़ना होता है।
1: बहुत बहुत कुछ आप तो जानती है योग के बारे में।
3: एक्चुअली मैं ऑलरेडी योग करती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो हमारे कॉलेज में योगा डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे कॉलेज में करवाया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा बेनिफिट है, लाइक इससे तनाव में कमी होता है, बहुत अच्छी नींद आती है हमें, वजन प्रबंधन होता है इसमें, और बेहतर श्वास नियंत्रण भी इसमें होता है, और शारीरिक फिटनेस और लचीलापन तो होता ही है।
1: अंकिता जी, आपने जब से योग शुरू किया है तो आपको कुछ लाभकारी आपके लिए साबित हुआ है ये?
3: बिल्कुल।
1: क्या आपने इसके बारे में?
3: सबसे पहले तो आजकल के जो युवा है वो ऑब्वियसली बात है, हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो है फिटनेस,

0: थोड़ा लुकिंग में थोड़ा अच्छे लुक्स आए।
1: सारे लोग जिम का चक्कर काटने लग गए हैं जबकि
0: हाँ
1: यूरोप अपने आप
0: वही
1: कहते हैं लोग।
0: वही चीज है। तो मीन्स इससे और बहुत सारा, जैसे कि मुझे ना पहले थोड़ा पाचन का, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था, तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। क्योंकि ये योग जो होता है ना, ये कब्ज वगैरह जैसे समस्या से राहत दिलाने में ये सब हेल्प करता है। और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मीन्स नींद रात को बहुत अच्छी आती है। और जैसे भी जोड़ों का दर्द या पीठ का दर्द, पहले मीन्स बहुत पेन होता था, वो सब चीज से भी थोड़ा राहत मुझे है।
1: आप तो योग के बारे में बहुत कुछ जानती भी हैं और बहुत करती भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे घूमता माइक्रोफोन में आम नागरिकों से योग के बारे में उनकी राय। तो दोस्तों, आप भी योग ज़रूर कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब है हमारा सबसे अमेजिंग सेगमेंट। जी हाँ श्रोताओं, अब है हमारा अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट। तो जानते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, भालू की नाक इतनी शक्तिशाली होती है कि वो 30 किलोमीटर दूर से मरे हुए जानवर की गंध सूंघ सकता है। लेकिन सबसे अजीब तथ्य यह है कि वो बिजली के तारों को काट सकता है बिना करंट लगे, क्योंकि उसके मोटे फर और सूखे पंजे उसे इंसुलेट कर देते हैं।
1: वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो दोस्तों, आज के युवानी कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति, अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय नए मुद्दों के साथ।
0: मगर हाँ दोस्तों, अपनी शिकायतें और सुझाव इस पते पर भेजें। हमारा पता है feedbackairpatna@gmail.com। फिर से सुन लीजिए feedbackairpatna@gmail.com। आपकी शिकायत और सुझाव ही हमें बेहतर बनाते हैं।
1: फीडबैक में ये ज़रूर लिखें कि किस प्रोग्राम के लिए फीडबैक दिया है, और अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। खुश रहें, ख्याल रखें और जागरूक बने।
0: बिल्कुल, और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। खुश रहिए, ख्याल रखिए। तब तक के लिए हम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम खेल परिक्रमा। स्वर सहयोग हैं एलपी कुमारी के और प्रस्तुत करता है विभूति शंकर।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार एलपी जी, और श्रोता आप भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। आपको जानकर खुशी होगी कि फुटबॉल के रंग में दुनिया रंगने जा रही है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होने वाली है और ये 20 जुलाई तक चलेगा। और इसके साथ ही 12 जून से ही वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो रही है, तो खेल की इन गतिविधियों में अपना मन और दिल दोनों लगाए रखिए।
0: और साथ ही साथ गर्मी का मौसम है तो अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखें। तो चलिए अब सेगमेंट खेल गतिविधियां में जानते हैं बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में, साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होने वाली है। मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले से यह शुरुआत होगी और इस मुकाबले से ठीक 90 मिनट पहले रंगारंग उद्घाटन कार्यक्रम होना है। फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा और भव्य संस्करण होगा। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था, लेकिन वैश्विक भागीदारी बढ़ाने और अधिक देशों को मौका देने के उद्देश्य से इसका विस्तार किया गया है। इस नए प्रारूप में एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया और उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों की अधिक टीमों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 48 टीमों को 12 समूह में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक समूह में चार चार टीमें होंगी। इस समूह में शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। इसके अलावा सभी समूह में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम में से सर्वश्रेष्ठ 8 टीम को भी अगले दौर का टिकट मिलेगा। इस बदलाव के साथ नॉकआउट चरण में पहली बार राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा, जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। फुटबॉल जगत की नजरें अब 2026 विश्व कप पर टिकी हैं, जो आकार, भागीदारी और मुकाबलों की संख्या के लिहाज से अब तक का सबसे भव्य विश्व कप आयोजन होने जा रहा है।
0: और अब जानते हैं महिला T20 विश्व कप के बारे में। इस वर्ष यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है और इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका फाइनल मुकाबला 5 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभाल रही हैं और स्मृति मंधाना उप कप्तान है। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच 14 जून को खेला जाएगा, जबकि 17 जून को भारत बनाम नीदरलैंड का मैच होगा। 28 जून को ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत का मैच खेला जाएगा। ये सारे मुकाबले इंग्लैंड के 7 ऐतिहासिक स्टेडियम में खेले जाएंगे। 12 जून से ग्रुप नॉकआउट मैच खेले जाएंगे, जो कि 30 जून को पहला और 1 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा।
1: क्रिकेट की बात को आगे बढ़ाते हैं। ढाका में पिछले दिनों खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज में वर्षा से प्रभावित पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों से हराकर चौंका दिया। वनडे में बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया पर यह 21 साल बाद जीत मिली है। इससे मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा वनडे गुरुवार यानी कल खेला जाएगा। बांग्लादेश के 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वर्षा आने तक ऑस्ट्रेलिया 191 रन के स्कोर पर 9 विकेट गंवा चुका था। इसमें केवल 4 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए थे। कैमरन ग्रीन ने नाबाद 52 रन बनाकर सबसे ज्यादा

0: संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा साथ नहीं मिला और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते गए। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मुकाबले में तमीम नजमुल हुसैन शांतो और मोसादेक हुसैन की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 284 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।
1: श्रोताओं, अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल गतिविधियां में। आइए सुनते हैं योग प्रशिक्षक और वेलनेस कोच प्रीतम कुमार को। इनसे बात कर रहे हैं चंद्रमणि भारती।
2: योग और खेल, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं योग प्रशिक्षक और वेलनेस कोच प्रीतम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम सर। खेल जो होता है मुख्यतः उसमें शरीरों का भी व्यायाम अच्छा खासा हो जाता है और योग भी एक व्यायाम की पद्धति है, तो इन दोनों में किस तरीके से संबंध स्थापित किया जा सकता है? और खिलाड़ियों को एक अभ्यास तो व्यायाम तो हो जाता है उनको दौड़ने का, उससे भी श्वास के संचालन में और उनके नियंत्रण में वो काबू पाते हैं, मगर योग के माध्यम से किस तरीके से और ज्यादा उनमें निखार लाया जा सकता है?
3: 100%, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि खेल के प्रति अभी मैं जैसा देख रहा हूँ पटना के अंदर अभी खेल जो चल रही है और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और काफ़ी बेस्ट चीज़ें चल रही है और काफ़ी लोग जो यंगस्टर हैं खेल के प्रति ध्यान दे रहे हैं और उसमें योग जो है बहुत बढ़िया किया जा रहा है। और खिलाड़ियों के लिए जैसा आपने पूछा कि क्या महत्वपूर्ण है, तो बताना चाहूँगा जो भी श्रोताएं खिलाड़ी अभी जो सुन रहे हैं, योग जो है ना आप लोगों के लिए लचीलापन, जैसे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अगर कहीं चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्प्रेन आ जाती हैं, क्रैम्प आ जाती हैं रनिंग में खासकर, तो उससे बचाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑलवेज आपके कोच बोलते होंगे फोकस, ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो योग आपको इसमें बहुत ही मदद करेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो रोजाना अगर आप योग अभ्यास करते हो तो 20 से 30% तक आप अपने गेम में सुधार देख सकते हो। 20 से 30% बहुत बड़ा नंबर होता है। आप अपने खेल को इम्प्रूव करना चाहो तो योग इसमें काफ़ी मदद करेगा आपको।
2: जी, तो जैसा कि प्रीतम जी हम सभी जानते हैं कि जो भारत में भी जितने प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है उसमें योगासन को भी एक खेल के रूप में लाया गया है।
3: राइट
2: पारंपरिक जितने भी खेल हैं हमारे उसको इसमें लाया गया है, उसमें मलखंब भी है,
3: हंड्रेड
2: योगासन भी
3: राइट
2: है।
3: राइट
2: तो कितनी भूमिका निभाता है, किन किन, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं
3: हंड्रेड
2: ठीक है,
3: परसेंट
2: या फुटबॉल खिलाड़ी हैं या तैराक हैं,
3: हंड्रेड परसेंट
2: उनको कौन कौन सा योग करना चाहिए जिससे वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं?
3: 100% फुटबॉल हो क्रिकेट हो, उसमें रनिंग आम है, दौड़ना धूपना और उसमें क्रैम्प आना जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो उसमें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। कौन कौन से आसन उनके लिए बेस्ट रहेगा ये हम जानते हैं, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है ना, तो इसमें आपको धनुरासन, इसमें होता क्या है ना कि पेट के बल लेट के पीछे की तरफ हाथ ले जाकर अपने एंकल को पकड़ना होता है और धनुष की तरह अपने बॉडी को ऊपर खींचते हुए, एक खींचा हुआ धनुष जैसे रहता है ना वैसा बनाना होता है शरीर को। तो ये आसन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, बैक को इम्प्रूव करेगा। बॉलिंग जो करते हैं ना वो क्रिकेटर, तो उसमें उनकी शोल्डर की जो मोबिलिटी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेंथ, तो वो उनको इम्प्रूव करके देगा। वृक्षासन फोकस को बढ़ाएगा जो कि खड़े होकर एक पैर पे किए जाने वाला आसन है। इसके साथ ही त्रिकोण आसन होता है, पैर फैला के आगे की तरफ झुकना और साइड स्ट्रेचिंग होती है बेली की, उसमें दोनों पैर फैलाकर, तो ये सारे मुड़ाव और खिंचाव जो है ना उनके बैटिंग और बॉलिंग में बहुत मदद करती है। अगर बात किया जाए कि ऐसे ही फुटबॉल वाले जो प्लेयर होते हैं तो उसमें बकासना होता है, एक पैर वाले जो भी आसन है जिसमें संतुलन बना सकें, क्योंकि फुटबॉल बहुत संतुलन वाले गेम है, रनिंग के साथ उनको बैलेंस करना होता है और हर एक मूवमेंट में चेंज करना पड़ता है उनको, तो इसके लिए उनको ये जरूरी है कि वो ऐसा आसन करें जो कि पाँव के ऊपर खड़े होकर एक साथ एक पैर से हो जाए। प्राणायाम जरूरी है क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स को रेगुलर भागने पड़ते हैं, 90 मिनट्स का आई थिंक होता है उनका, और साथ ही ध्यान ताकि आप बॉल पे फोकस कर सको, ये सारी चीजें हैं।
2: तो योग जो है एथलीटों के मानसिक स्थिति में जो पॉजिटिवनेस है वो किस प्रकार से लाता है?
3: पॉजिटिविटी जब भी आएगा, जब आप इंटरनल ट्रैवल करोगे, इंटरनल मीन्स सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, अपने आप को जो समझ गया वो बाकी चीज़ों से एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रेम से अटैच हो पाता है। इसमें ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं हम लोग। आसन अभी मैंने बताया, प्राणायाम जैसा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं अगर वो करते हैं, तो इसके बाद ध्यान, इसकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, हर एक एथलीट को एकाग्रता, उनकी गोल उनके फोकस होती है, तो ये सारी चीज़ें और संकल्प शक्ति चीज़ें वहाँ मेडल का एक अचीवमेंट का जो रहता है गोल उनका वो पूरा करेगा।

0: कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतः एथलीट जो होते हैं, हमारे खिलाड़ी होते
1: हम्म,
0: हैं, वो अपना जो ट्रेनिंग करते रहते हैं उसी दौरान उनको चोट भी लगता है, या खेल के दौरान ही चोट लग जाता है। तो क्या चोट से उबरने के लिए भी योग कारगर
1: 100%।
0: है?
1: जब भी चोट स्प्रेन आती है, एंकल मुड़ गया, तो उनके कोच उनको बर्फ़ सेकने को बोलते हैं। बहुत सारे तरह तरह की फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिसमें भी योग होता है। तो योग एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम इसमें देखें तो सूजन कम करने के लिए विशेष रूप से कुछ आसन है जिसमें बहुत ही मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें ऐसे एंकल में अगर चोट आ गया तो बहुत धीरे धीरे उसे रोटेट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। तो हर तरीके के लोगों के लिए योग में है कुछ ना कुछ, ये सभी के लिए है। मांसपेशियों में अगर चीज़ें हो गई, क्या है, मांसपेशियाँ एक दूसरे पे चढ़ जाती है, और वो चढ़ती है तो बहुत दर्द करती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए शुरुआत में ही प्रिवेंशन किया जाता है, मीन्स आप फ्लेक्सिबल रहो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी। जोड़ों में जो होता है ना, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम्स बहुत, एथलीट को आपने सुना होगा कि एक टाइम में ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें कुछ आसन जैसे गौमुख आसन उसके लिए बेस्ट रहता है।
0: गौमुख आसन क्या है?
1: गौमुख आसन क्या है, ये बेस्ट है। गौ के मुख के जैसा अपने शरीर को बनाना पड़ता है, जिसमें आप पहले तो वज्रासन में बैठते हो। वज्रासन बैठना होता है जैसे दोनों घुटनों को मोड़ कर, लेकिन इस वज्रासन में क्या होता है, एक पैर पे बैठना होता है और दूसरा पैर उसके ऊपर होता है क्रॉस कर कर, और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में शरीर को सीधा रखकर हम बैठते हैं। यहाँ पे फोकस और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी पैरों की बहुत अच्छी होती है।
0: तो देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी दिनचर्या पूरी बनी हुई होती है कि सुबह को क्या करना है, दिन को क्या करना है, शाम को क्या करना है, खाना किस प्रकार से खाना है। तो योग इस दिनचर्या में किस तरीके से फिट बैठे?
1: ये चीज़ें हैं। हाँ, योग को आप किस टाइम करें, कैसे इस दिनचर्या में लेकर आए, लगभग एक योग शिक्षक का पॉइंट अभी हो रहे हैं शायद। अभी होता क्या है कि सारे जितने वर्कआउट वार्म अप खिलाड़ियाँ कर लेते हैं, वार्म अप के बाद वर्कआउट, और फिर लास्ट में कूल डाउन का एक सेक्शन होता है उन लोग का, यानी शरीर को थोड़ा शिथिल करने का, ताकि जो भी मांसपेशियों पे दबाव पड़ा है, लैक्टिक एसिड्स जो रिलीज हुए हैं उनके पूरे शरीर में, उनको रिलीज कर सके, मांसपेशियों को रिलीज कर सकते, मानसिक रूप से शांत हो सके, उसके लिए वो लोग कूल डाउन करते हैं। योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि 10 मिनट का प्राणायाम, 15 मिनट का सूर्य नमस्कार, या फिर ध्यान अगर वो कर लेते हैं 10 मिनट, लास्ट में कुछ आसन जो बेसिक स्ट्रेचेज होते हैं जिसमें भुजंगासन, पर्वतासन, ये सारे मार्जारी आसन, चक्रासन, साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार कर लें, तो लास्ट में इतना रिफ्रेशिंग सा हो जाता है कि कल के लिए वो फिर से तैयार हो जाते हैं।
0: कुल मिलाकर कहें प्रीतम जी, तो युवा खिलाड़ियों के लिए योग के क्या-क्या फायदे हैं?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो विकास में जैसे कि हर एथलीट चाहता है कि मैं कुछ अलग करूं और कुछ अचीव करूं, तो हर लेवल पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ध्यान उनमें एकाग्रता पहले पहले देगी, और अंतर शक्ति जिसको बोलते हैं विल पावर, वो उसमें पहले तो आएगा। इसके बाद जैसे अगर कोई चोट वोट लगता है जिसमें पैर वैर मुड़ जाना, तो उसमें वो बहुत जल्दी प्रिवेंट कर जाएंगे, जिसे रिकवरी कहते हैं। ये विकास में जैसा मैंने बोला, पोस्चर में सुधार करते हैं। एक रनर्स को ना, जो रनर होते हैं या लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं, उनमें पोस्चर मैटर करता है, उस पोस्चर को सुधारेगा, क्योंकि ये योग जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। टीम वर्क में सुधार करेगा, क्योंकि योग सबके लिए स्टार्टिंग से बना हुआ है, सब कुछ जिस जो भी आना, जो भी लेना चाहे योग से कुछ ना कुछ ले सकता है। वो भावना उनमें भी आती है, टीम वर्क का भावना आ जाता है अगर वो योग को करना शुरू करते हैं तो। और चोटों से जैसे मैंने बोला कि रोकथाम तो है ही, तो ये सारी चीज़ें हैं सर इसमें।
0: जी, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अष्टांग योग के जो यम, नियम,
1: नियम,
0: आसन,
1: आसन,
0: प्राणायाम,
1: प्राणायाम,
0: प्रत्याहार
1: प्रत्याहार,
0: हैं, इनसे खिलाड़ियों को बहुत ही अधिक फायदा हो सकता
1: हंड्रेड
0: है। उनका
1: परसेंट
0: मानसिक विकास हो सकता है, मानसिक
1: राइट,
0: संतुलन स्थापित हो सकता है, आत्मनियंत्रण वो कर सकते हैं,
1: 100%,
0: और किसी भी चीज़ पर फोकस्ड
1: वो
0: होकर
1: जरूरी, सबसे
0: अपने लक्ष्यों
1: जरूरी,
0: की प्राप्ति कर
1: हंड्रेड
0: सकते हैं।
1: परसेंट
0: प्रीतम जी, आप हमारे स्टूडियो आए और योग और खेल को एक दूसरे से जोड़ा, और खिलाड़ियों को किस तरीके का योग करना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे होते हैं इस पर बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर।
2: रोचक तथ्य में आज हम जानेंगे भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंडर बापू नाडकर्णी के बारे में।
0: क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें अक्सर रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते भी हैं। कभी गेंदबाजों पर बल्लेबाज हावी रहता है तो कभी बल्लेबाजों पर गेंदबाज। लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने रन न देने का ऐसा महारिकॉर्ड स्थापित किया कि दुनिया देखकर दंग रह गई। वह नाम है रमेश चंद्र गंगाराम नाडकर्णी, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया बापू नाडकर्णी के नाम से भी जानती है। 12 जनवरी 1964 को तब के मद्रास का कॉरपोरेशन स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय कप्तान मंसूर अली

0: खान पटौदी ने गेंद बापू नाडकर्णी को थमाई। नाडकर्णी अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर थे। उस दिन मैदान पर कुछ ऐसा होने वाला था जो न इससे पहले कभी हुआ और न ही उसके बाद कभी देखा गया। बापू नाडकर्णी ने गेंदबाजी शुरू की और फिर शुरू हुआ मेडन ओवर्स का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जिसने अंग्रेज बल्लेबाजों के धैर्य की खूब परीक्षा ली। बापू नाडकर्णी ने एक के बाद एक मेडन ओवर फेंकने शुरू किए। इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्रायन केन और केन बैरिंगटन क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन नाडकर्णी की गेंद उनके लिए किसी अनसुलझी पहेली जैसी बन गई और लगातार 21 ओवर मेडन हो गए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो आज तक नहीं टूट सका है।
1: ब्राजीलियाई पैरालंपिक तैराक गैब्रियल अराउजो के बारे में सुनते हैं चंद्रमणि भारती से।
0: फोकोमेलिया नामक जन्मजात विकार से पीड़ित ब्राजील के 24 वर्षीय गैब्रियल अराउजो को दिव्यांग वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसमें व्यक्ति के हाथ पैर सीधे धड़ से जुड़े प्रतीत होते हैं, जो समुद्री जीव सील के फ्लिपर्स यानी पंख जैसे दिखाई देते हैं। यह गंभीर समस्या गर्भावस्था के दौरान गलत दवा लेने से होती है। सिर्फ 4 फुट लंबे फ्री स्टाइल तैराक अराउजो इस दुर्लभ बीमारी के कारण परंपरागत तरीके से तैराकी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस कमी को तराश के खुद को काबिल बनाया। बिना हाथों के ही छोटे छोटे पैरों से पानी को चीरते हुए उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। हाल यह हो गया कि पानी में उनकी रफ्तार के कारण उनका नाम रॉकेट मैन पड़ गया। ब्राजील में सांता लुजिया में रहने वाले अराउजो ने 13 साल की उम्र में पहली बार 2020 के पैरालंपिक में हिस्सा लिया और सबको चौंकाते हुए 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर धाक जमा दी। अराउजो ने उसके बाद 22 साल की उम्र में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी जलवा बिखेरा। उन्होंने SM2 श्रेणी में एक ही दिन में 2 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और 3 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिए। उसके बाद 2025 के विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप में उन्होंने A2 श्रेणी की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाने के बाद SM2 श्रेणी में 150 मीटर व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने सिर्फ 6 साल के कैरियर के दौरान वह अब तक पैरालंपिक, विश्व चैंपियनशिप और पैन अमेरिकी खेलों में 19 स्वर्ण पदक के साथ 1 रजत पदक भी जीत चुके हैं। वो अब तक 2 पैरालंपिक में हिस्सा लेकर 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा वे 3 विश्व चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुके हैं और इस प्रकार अराउजो ने जन्मजात बीमारी को अपनी ताकत बना लिया।
1: चहल पहल में आज हम जानेंगे भारत के लंबी दूरी के महानतम धावक शिवनाथ सिंह के बारे में।
0: शिवनाथ सिंह भारत के लंबी दूरी के महानतम धावकों में से एक थे। सिंह ने एशियाई खेलों में 2 बार और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1976 और 1980 में 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपके नाम 1978 में भारतीय राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड भी है, जिसमें आपने सर्वश्रेष्ठ समय 2 घंटा 12 मिनट का निकाला। यह रिकॉर्ड जालंधर में बना था। सबसे दिलचस्प बात है श्रोताओं कि पूरे दौड़ कैरियर में शिवनाथ सिंह ने नंगे पैर दौड़ लगाई, और ये बताते हुए हमें गर्व है कि आपका जन्म बिहार के बक्सर जिले के मझरिया में हुआ था। आपने भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में भर्ती होकर नायक सूबेदार के पद तक तरक्की की। भारत के लंबी दूरी के महानतम भारतीय धावक शिवनाथ सिंह का 6 जून 2003 को जमशेदपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, पर उनका रिकॉर्ड कुल 47 साल तक कायम रहा और 47 साल बाद 2026 में रॉटरडम मैराथन में सावन बरवाल ने शिवनाथ सिंह के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास रचा है। सावन ने यह कारनामा 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड का प्रभावशाली समय निकालकर शिवनाथ सिंह के 2 घंटे 12 मिनट के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड के लिए सावन बरवाल को पूरे देशवासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, अब खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। तो आज के 2 सवाल पूछने से पहले आपको पिछले अंक के दोनों प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, इटालियन ओपन 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है?
2: सही जवाब है, इटालियन ओपन 2026 महिला वर्ग का खिताब एलिना स्वीटोलिना ने जीता है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था,

0: टी20 वर्ल्ड कप 2026 कब से शुरू होकर कब तक चलेगा और कहां खेला जाएगा?
1: सही जवाब है महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 12 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगा। इसका आयोजन इंग्लैंड में होगा।
0: इन दोनों प्रश्नों के हमारे पास सही जवाब जिन श्रोताओं ने भेजे आपके नाम है अंकिता शर्मा सैदपुर से, रोहित कुमार हैं राजेंद्र नगर पटना से, अश्विनी जी हैं लोहानीपुर पटना से और रीशु हैं जिन्होंने पता नहीं लिखा है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव। अब आज के दो प्रश्न ध्यान से सुने। आज का पहला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी और कितने मैच खेले जाएंगे?
1: सवाल एक बार फिर से सुनिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी और कितने मैच खेले जाएंगे?
0: और दूसरा प्रश्न है, महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?
1: महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला जाएगा?
0: इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें एक सप्ताह के अंदर यानी अगले मंगलवार की शाम तक हमारे पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। हमारा पत्राचार का पता नोट करें।
1: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
0: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। अब आपकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

0: और इसी के साथ इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपसे विदा लेंगे इसी हिदायत के साथ कि गर्मी के प्रकोप में अपना हौसला और स्वास्थ्य दोनों बेहतर बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी खेल गतिविधियां हैं जिसमें आपका होना जरूरी है, ताकि हम आपके साथ खेल संबंध बनाए रखें और आपके लिए कार्यक्रम भी बनाते रहें। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
1: और LP को
0: आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम खेल परिक्रमा अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

आपसे कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 6:30। शाम 7:00 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

जिले की हलचल आप सुनेंगे 7:47 पर। समाचार ध्वनि चित्र आप सुनेंगे शाम 7:52 पर।

सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, विषय होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सुनेंगे रात 8 बजे।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन, बस थोड़ी ही देर में।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे ज्यादा समय तक सेवा करे वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गेल बाड़े। श्री मोदी 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहले। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार कार्यकाल अब 4,399 दिन के हो गेल बा, जे एगो रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी के देश के सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे पर बधाई देले बाड़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति कहली कि ई ऐतिहासिक मौका देश के जनता के उनकरा नेतृत्व में अटूट विश्वास और ई भरोसा के प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी तरक्की और वैश्विक स्तर पर भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़त देखल गेल बा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बाकी केंद्रीय मंत्रियों लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई देलन सन। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज एगो प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री के लगातार दूगो कार्यकाल तक सबले ज्यादा समय ले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने पर बधाई देलस। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले कि मंत्रिमंडल के सदस्य लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान जतौले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहले कि प्रधानमंत्री मोदी समाज के हर वर्ग के भलाई और विकास खातिर काम कैले बाड़े। एमे खास करके महिला लोगन के सशक्तिकरण उल्लेखनीय बा। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे पर बधाई देले बाड़े। प्रधानमंत्री खातिर लिखल एगो चिट्ठी में श्री चौधरी कहले कि उनकरा कार्यकाल में भारत के साथे साथ बिहारो नया ऊंचाई छूले बा। मुख्यमंत्री आस जतौले कि आगहू बिहार के श्री मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग मिलत रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्य के 94 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियन के खाता में लगभग 1100 करोड़ रूपया के राशि ट्रांसफर कैले। श्री चौधरी आज नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ई राशि भेजले। राजस्व महाअभियान के दौरान मिलल अर्जियन के निपटारा खातिर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के ओरी से काल से विशेष शिविर के आयोजन कैल जा रहल बा। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल बतौले कि इस शिविर सब क्षेत्रन में 17 जून तक लगावल जाए। बहुचर्चित टेंडर घोटाला में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमोश कुमार सिंह के विशेष निगरानी इकाई गिरफ्तार कर लीलस। ये सब लोगन के पास से कुछ दिन पहले 11,53,00,000 रूपया से ज्यादा के राशि जब्त कैल गेल रहे। इकाई ए मामला में अब तक 5 लोगन के गिरफ्तार कर चुकल बिया। निगरानी जांच ब्यूरो के टीम गया जिला के बेलागंज थाना क्षेत्र से चौकीदार मनीष कुमार के 9,000 रूपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कैलस। गिरफ्तार चौकीदार एगो केस से नाम हटवावे के बदला में शिकायतकर्ता से घूस लेत रहे। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव के पास NH57 पर भइल सड़क हादसा में 4 लोगन के मौत हो गई। ए हादसा में 7 गो और लोग घायल भइल बाड़े। हमार संवाददाता बतौले कि एगो 4 चक्का गाड़ी पहले साइकिल सवार के टक्कर मारलस और ओकरा बाद दूसरा लेन में जाके एगो कार से टकरा के पलट गेल। दरभंगा जिला के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एगो नाव पलट गेल। हमार संवाददाता बतौले कि ए हादसा में एगो महिला के मौत हो गेल बा, जबकि 2 गो और लोगन के खोजबीन जारी बा। हादसा में 7

0: लोगन के सुरक्षित बचा लिहल गईल। मौसम विभाग आज राज्य के बेसी हिस्सा में बारिश के अनुमान जतौले बा। ये दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिला में कई जगह पर भारी बारिश के चेतावनी जारी कल गई बा। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के भी अनुमान बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे हैं यादों की बारात फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र।

0: आहत्य षण्णवतिः समवायविशेषाः चिताः सन्ति। येषु द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर द्वादशसहस्रकोटिरूप्यकाणां प्रतिबद्धनिवेशः, अष्टपञ्चाशत्सहस्रकोटिरूप्यकाणां प्रत्याशितव्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49.4 अधिक 400 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पान् च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179.2 लाख करोड़ रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जवीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिकगृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम्, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। इति।

0: वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्ते दिव्या बहन।
1: नमस्कार विनीता बहन। अच्छा एगो हमरा तू बात पहले बतावा,
0: बताई बताई।
1: इतना गर्मी है, लहर है, और तू भाई इतना ही मोटका कपड़ा, इतना रोमझोम है, ऐसे करके इलाक तोरा गर्मी उर्मी ना लग लगा भाई अभी। अच्छा एक और खास बात, पानी के बोतल भी तू ना लेके ला, अब बतावा तू।
0: हाँ हाँ एकदम बताओ। तनी देखी गर्मी तो बहुत बा, गर्मी सही में हमरो लगता, लेकिन हम दरअसल नहिरा से आईली हैं।
1: हाँ
0: नहिरा से आइला पर तो अब देखी, अब नहिरा से ओइजे सीधे आ गई
1: भाई,
0: बनी।
1: ड्रम झम बन के आवे पड़ है।
0: अब ओइजा से आइल बा आदमी तक, बेटी के विदाई होला तो तनी तो हल्का टनक मनक कपड़ा, तनी हल्का फैशन मारिए के आयल नू यही से। आज चूंकि ऐजे सीधे आ गई नहीं है, ऐसे पानी के बोतल भी नहीं के, लेकिन कोई बात नहीं के दिव्या बहन, रुआ रखले बनी नू पानी तो पियत रहे
1: हाँ
0: के
1: भाई
0: बा।
1: हम तो भाई
0: एकदम
1: लेये के चला ही।
0: हाँ, तो पानी पियत रहा, में कोई कमी नहीं के करे के, हम ही ना सभी केहू के गर्मी में अपना शरीर में पानी के मात्रा बनौले रखे खातिर जरूरी बा कि पानी खूब पिए सलो।
1: पानी पियो, अभी आम पन्ना है, बेल के
0: हाँ
1: शरबत है,
0: एकदम एकदम।
1: गन्ना के रस है भाई, गर्मी के मौसम है तो खाए पिए के
0: जब
1: विशेष
0: अतना
1: ध्यान
0: पिए
1: रखे
0: के
1: के
0: बात रोआ
1: चाहिए।
0: कहीं नहीं, तो एक चीज के चीज हमू नाम ले,
1: अच्छा
0: सतुआ घोर के भोर का पहर जो पी के निकले आदमी घर से,
1: हाँ
0: एकदम
1: हाँ
0: मिर्चाई और
1: हाँ
0: प्याज उवाज डाल के कचका,
1: हाँ
0: स्वाद लगबे करेला, आ साथे साथे दिन भर तरी बनौले रहेला मन के।
1: हाँ तनी जान हाँ, आलतू फालतू आदमी से एकरा से दूरो रहत, क्या कि भाई
0: हाँ
1: प्याज खेबा तो मुंह महकता हो
0: एकदम
1: तो
0: एकदम
1: फालतू
0: सही
1: आदमी
0: का
1: के भाई सटे के कोनो जरूरी ना है
0: एकदम
1: कि
0: सही का
1: ना।
0: निरुआ। लेकिन देखी साथे साथे हमने नहीं तो बात कही नहीं, आदमी और हमने बड़कन के
1: हाँ
0: बच्चा के अगर बात कही जाओ दिव्या बहन, तो बच्चा लोग इनके भी बहुत जरूरी बा कि हमने इनके अभिभावक के तौर पे बताई जा कि भाई
1: हाँ
0: बाहर से आइला के बाद खेल के आ अचानक से पानी मत पीला, ना तो उससे सर्दी जुकाम होके के डर बनल रहेला।
1: हाँ ये है
0: आ लेकिन फिर कन के एगो और बात है याद पड़ल लैकन पे दिव्या बहन, कि लैकन के जब छोट लैकन होले सन, नवजात लैकन, तो जन्मते के 7-24 घंटा के भीतर उनका एगो टीका पड़ेला।
1: हाँ
0: लेकिन ऐसा बहुत सारा टीकाकरण होला जिकरा के धीरे धीरे अस्कतिया के माता पिता जो होला वो छोड़ दे वाले के ना छोड़ रहेगा।
1: सही कहथिन। देखथिन बच्चा के सुरक्षा के चक्र टूट नहीं पाए, हर
0: हाँ
1: बच्चा के टीका समय पर लग जाए है ना।
0: वाह एकदम सही कहने
1: तो
0: रहुआ।
1: देखथिन बच्चा कोई भी परिवार के खुशी और हमनी के देश के भविष्य होबा हथिन। जब घर में एगो नन्हा बच्चा के जन्म होबा है तो सौसे परिवार खुशी से भर जाथिन, मगर वो मासूम के मुस्कान के साथे साथ हमनी के एगो बहुत बड़ जिम्मेवारी शुरू होबा है, ओकरा एगो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देवे के जिम्मेवारी।
0: एकदम सही कहा दानी दिव्या भाई ना। देखिए छोट बच्चन के जो शरीर होला ना, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होला वो बहुत ही कमजोर होला, ऐसे वैसा में वो बीमारी के चपेट में बहुत जल्दी आ जाले।
1: हाँ
0: अब बहुत कुछ ऐसा जानलेवा बीमारी शुरू से चलल आ रहा बा, जैसे कि पोलियो, काली खांसी, टिटनस, खसरा, निमोनिया, जो कि पहले के अगर बात कर जाओ तो लाखों मासूमन के जान ले लेवा,
1: हाँ
0: हमेशा खातिर अपंग बना देला, अपाहिज बना देला। लेकिन विज्ञान आज हमने इनके इतना तरक्की कर चुकल बा कि यह बीमारी से लड़े खाती अचूक हथियार देलक, जेकरा के हमने इनके टीका कहेला जा। हाँ
1: हाँ
0: तो टीकाकरण बहुत जरूरी बा, वो टीका जब हमने इनके विज्ञान तरक्की करके ले आई बा तो बहुत जरूरी बा कि अपन अपन लैकन के हमने इनके टीकाकरण समय से
1: समय
0: जरूर
1: से
0: करवा।
1: हाँ। और देखिन आए हमने के भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष के तहत जन्म से लेके 16 साल तक के सभ्य के जरूरी टीका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र में एकदमे मंगनी में टीका लगावल जाए।

0: अरे एकरा लगी कोई भी पैसा देवे के जरूरी नहीं है। तो सरकार और स्वास्थ्य कर्मी अपने के दरवाजा तक आके अपने के बच्चा के सुरक्षा कवच दे रहे हैं। बस जरूरी है तो हमने के जागरूकता के
1: एकदम एकदम सही है ना।
0: लेकिन एक जागरूक माता पिता होवे के नाते हमने के ये फर्ज भी बना है कि बच्चा के जन्म के समय मिले वाला टीकाकरण कार्ड माने कि ममता कार्ड के संभाल के भाई रखथिन।
1: एकदम सही
0: हो जेते तब परेशानी है
1: एकदम।
0: और डॉक्टर चाहे NNM मतलब कि ANM दीदी द्वारा बतावल गेल तारीख पर लेकिन के स्वास्थ्य केंद्र में जरूरे ले जाथिन। अगर जो देखते कोई काम आ जाए कुछ परेशानी हो जाए तो कोई कारणवश कोई टीका छूट गए तो तुरते डॉक्टरी सलाह से ओकरा पूरा करवाथिन
1: एकदम। देखिए टीकाकरण कोनो दवा नहीं के है दिव्या बहन, बलो की बच्चा के शरीर के रक्षा प्रणाली के मजबूत करे वाला एगो ढाल है। जब हम समय पे बच्चा के टीका लगवाई ला तो उनका शरीर जो बा बहुत सारा खतरनाक बीमारी के खिलाफ लड़े के सीख जा रहा। ऐसे एक बात के समझल यहाँ बहुत जरूरी बा कि टीका लगवावे के बाद बच्चा के हल्का बुखार चाहे रुआ देखल हो कम चिड़चिड़ापन हो जाला रात रात भर लेकिन सुतल है सना तो ये सब चीज से डरे के जरूरत नहीं है। सामान्य प्रतिक्रिया है आ ए बात की सबूत है कि वो टीका जो बा शरीर में असर करा था। ऐसे मामूली दर्द से डर के हमने इनके बच्चा के पूरा जीवन के खतरा में एकदम न डाले के चाहे। आज जैसे कि रुआ कहनी कि टीकाकरण जब समय होके तो डॉक्टर भी चाहे एनएम दीदी भी जाके टीकाकरण जरूर करवावे के चाहे।
0: टीका के महात्म के भाई बहुत ज्यादा बतावे के जरूरी ना है क्या कि हमने कोरोना काल में देख लिये हमने भाई टीके से हमने भाई बचलिए हमने के अपना जो बढ़िया नीमन आदत हले ओकरे से हमने सब सुरक्षित रह।
1: टीकाकरण देखिए सिर्फ एगो बच्चा के सुरक्षा ना है ये बलु पूरा समाज के सुरक्षा। जब हमने इनके बच्चा स्वस्थ रही तबे न देश मजबूत हो की ऐसे ही संकल्प लेवे के जरूरत बा कि अपन घर परिवार आस पड़ोस के कौनो भी बच्चा के यह सुरक्षा चक्र से वंचित नहीं के रह देवे के। दवाई भी कड़ाई भी और सही समय पे हर टीका के खुराक भी। तो अब टीकाकरण पे तो बात भ गई कि लैकन महफूज रह सुरक्षित रह साथ साथ लैकन के माता पिता भी खुश रहे एक जिम्मेदारी हमनी है के बा।
0: हाँ लैकन के माता पिता का लोक गीत सुन के लैकवो खुश रहा है
1: एकदम। तो कहे ना सुनवाई हमने इनके एगो लोक भजन
0: शंकर राम से
1: तो सुनी सभी लोक भजन।

0: विनीता बहन आ देखती ना अभी हम उन्हें बैठे रहिए
1: अच्छा
0: तो एगो लेका के देखलिए कि भाई ओकरा दांत आधा भाई कीड़ा उड़ा लगल है ना।
1: आजकल देखी लइकन में बहुत समस्या बा, कुछ भी खा लेना, खाली टॉफी चॉकलेट एकदम ये सब खात रहना, कुरकुरे चिप्स पॉकेट बंद वाला जो चीज होला इहे में मन लागे।
0: है वो हमने बाकी हमने मुंह न धोई तो लगा है कि धोले
1: बिल्कुल दांत के सफाई के अगर बात की जाओ तो लेकिन दांत के सफाई पे भी आजकल ध्यान ना देवा
0: भाई। तो हमने क्या करे कि मतलब पेस्ट में तनी नमक मिला लली हुआ तो तनी हल्दी मिला लली हुआ, कहियो सरसों तेल तो कहियो नारियल के तेल,
1: बिल्कुल
0: त न चमका है। आई लोग कहे बाकी चॉकलेट खा लथुन
1: आजकल के लइकन मुंह खोलिए से तो दाँते दिखाई करिया करिया
0: मर्दाना सब कितना गुटका खैथुन थूक दथुन इतना हमनी भाई नशा बंदी या नशा मुक्ति पर जोर दे भाई अब बैठ जाते हैं बगल में ही
1: हाँ तो
0: वो मांगते रहते हैं
1: भाई रोहित से
0: लगता है कि भाई उल्टी
1: हो मुझे देख के लगी कि अभी काय करते हैं हंसला भाई चुप हो जाए। दांत के देखभाल देखी दिव्या बहन लइकन होके बड़ होके सभी के बहुत
0: सभी के करे के
1: एकदम
0: अनशन खाए के ना चाहिए
1: एकदम एकदम सही कहते नहीं तो दांत के देखभाल कैसे कर जाओ।
0: हाँ
1: एक से संबंधित एगो वार्ता का है ना हम इनके सुनवा
0: अच्छा
1: तो सुनी सभी वार्ता के दांतों के देखभाल कैसे करें आयकर वार्ता कर बारे डॉक्टर दया शंकर जी
0: सुनल जाए।
2: आज हम चर्चा करेंगे दांतों की देखभाल कैसे करें। एक खूबसूरत मुस्कान सिर्फ चेहरे के भाव से कहीं ज्यादा, यह आंतरिक आत्मविश्वास, पेशेवर सफलता और बाहरी सुंदरता का प्रतिबिंब है। इस मुस्कान की सुंदरता स्वस्थ दंत पंक्तियों द्वारा निर्भर करती है। जब आपके दांत और मसूड़े अच्छे और स्वस्थ होते हैं तो आपकी मुस्कान बहुत मनमोहक हो जाती है। दांत सिर्फ सौंदर्य का साधन मात्र नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग भी है। दांत आपके पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जो भोजन को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, चबाते हैं एवं पीसने में उपयोगी हैं, जिससे आप अपने भोजन को सरलतापूर्वक निगल सकते हैं जो कि पाचन में बहुत मददगार होता है। साथ के साथ दांत हमें शब्दों के सही उच्चारण या बोलने में भी मददगार है। हमारे दांतों की बनावट चार मुख्य परतों द्वारा होती हैं। सबसे बाहरी सफ़ेद रंग का दिखने वाला सुरक्षात्मक परत जिसे हम इनेमल भी कहते हैं जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है। उसके ठीक नीचे डेंटिन की एक परत होती है। अपने दांत की सबसे भीतरी परत को टूथ पल्प कहते हैं। हमारे दांत के जड़ों को ढकने वाले परत को सीमेंटम कहते हैं जो बाहर से मसूड़े से ढका होता है। यदि दांत की सही देखभाल

की जाए तो ये दर्द भी दे सकते हैं, जो कि बहुत जोखिम भरा होता है एवं बेहद दर्दनाक एवं पीड़ादायक होता है। दांतों में कई तरह की समस्याएं हैं जो आपके दांतों की उचित देखभाल ना करने से ही उत्पन्न होती है। यदि आप और हम इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दांतों की देखभाल सही विकल्प के साथ करना चाहिए। जितने अच्छे से हम अपने दांतों की देखभाल करेंगे उतना ही लंबा दांत हमारे मुंह के अंदर रहेगा और दांतों की उम्र बढ़ेगी, वह भी स्वस्थ रहते हुए जीवन भर आपका साथ निभाएगी। सबसे पहले दांतों की देखभाल के लिए हमारे पास घरेलू विकल्प है। पहला, ठीक से ब्रश करना। अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ब्रश करना एक सरल और आसान प्रक्रिया है जो हम रोज करते हैं। यह प्रक्रिया कई लोग करते हैं फिर भी दांतों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह भी है कि आप अपने दांतों की ठीक से ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं। आप अपने दंत चिकित्सक से चर्चा करें कि आपके लिए कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। एक सही तरीका है कि आप अपने टूथब्रश के सिरे को अपने दांतों के सामने रखें, फिर बिसल्स जो ब्रश के रेशेदार नोक होते हैं को अपने मसूड़े के साथ 45 डिग्री का कोण पर झुकाएं एवं ऊपर वाले दांतों के लिए नीचे की तरफ स्ट्रोक करें एवं नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ स्ट्रोक करें हल्के हाथों से। प्रत्येक दांत की बाहरी सतह जो गाल की तरफ होता है, अंदर वाली सतह जो जीभ की तरफ होता है या तालू की तरफ होता है, उसे अच्छे से साफ करें। अपने दांत के चबाने वाले सतह को आगे पीछे ब्रश को स्ट्रोक करके करें। सामने वाले दांतों को साफ करने के लिए ब्रश को लंबवत झुकाएं एवं ब्रश के अगले हिस्से से कई छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रोक बनाकर साफ करें। संपूर्ण मुंह को साफ करने के लिए अपनी जीभ की भी साफ सफाई पर ध्यान दें। एक सवाल यह है कि हमें कितनी बार ब्रश करनी चाहिए, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमें 2 बार ब्रश आवश्यक रूप से करना चाहिए, एक बार सुबह सुबह और दूसरी बार सोने से पहले, वो भी सही तरीके से। हमें अमूमन 2 से 3 मिनट सही तरीके से सही तकनीक अपनाते हुए ब्रश करना चाहिए। ज़्यादा देर तक कभी भी ब्रश ना करें। हमें अपने ब्रश को हर 3 से 4 महीने होते होते बदलते रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक एक ब्रश के इस्तेमाल से ब्रश के साफ करने की क्षमता बहुत कम जाती है, हमारे दांतों एवं मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचाती है। हमें टूथपेस्ट व्यस्कों के लिए मटर के दाने के आकार के बराबर लेना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, एवं छोटे छोटे बच्चों में चावल के दाना के आकार के फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने दांतों के बीच की सफाई इंटरडेंटल ब्रश या फ्लॉसल से करना चाहिए। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता है। दिन में कम से कम एक बार नियमित पैटर्न को अपनाते हुए आईने में देखकर फ्लॉसल का या इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें। घरेलू विकल्प है कि अपने दैनिक आहार में चीनी या मीठा की मात्रा का सेवन कम से कम करें, क्योंकि अगर चीनी का सतह हमारे दांतों की सतह पर ज़्यादा समय तक बना रहता है तो उस पर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और यही बैक्टीरिया दांतों की सड़न और पीड़ा का कारण बनते हैं। साथ के साथ अपने खाने के बीच के अंतर को जरूर बनाए रखें। भोजन या नाश्ते के बाद पानी से अच्छे से कुल्ला करना बहुत जरूरी है। दैनिक आहार में मौसमी फल का जरूर सेवन करें। साग सब्जी प्रचुर मात्रा में लेते रहें। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी अन्य तरह के तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मुंह में तेल भरें, ऑयल पुलिंग। इस प्रक्रिया से कीड़े और सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी कम हो जाती है मुंह के अंदर और मुंह के संक्रमण काफ़ी हद तक कम जाते हैं। प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे हमारे मुंह की बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। कभी कभी यदि दांतों में दर्द का एहसास है तो लौंग के तेल का उपयोग या लौंग का उपयोग किया जा सकता है। जो लोग कृत्रिम दांत या डेंचर पहनते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि डेंचर की सफाई अपने दांतों के बराबर नियमित रूप से जरूर करें। अब हमारे दूसरे विकल्प की देखभाल के लिए हमारे दंत चिकित्सक जो कि उसका उपचार करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों की सफाई करते हैं। यदि आपके दांतों में कोई भी खाद्य का कण जम जाते हैं और आपके घरेलू विकल्प के द्वारा ठीक नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने दंत चिकित्सक से मिलें। दंत चिकित्सक आपके अपने उपकरणों के माध्यम से इसे साफ करते हैं। सही दवाइयों का चयन और उसका उपचार आपके दांतों की देखभाल में आपके दंत चिकित्सक आपके दांतों में मसूड़ों का परीक्षण करके आपको बताते हैं। छोटे बच्चों के दांतों की विशेष देखभाल करने के लिए हमें आवश्यकता है कि करीब 6 महीने की उम्र में बच्चों के दांत निकलने शुरू हो
हो जाते हैं और यह प्रक्रिया 3 साल तक चलती रहती है।

0: जिसमें बच्चों के दूध के दांत विकसित होते हैं। यह दूध के दांत भी कहे जाते हैं। दूध के दांत भी अस्थायी दांतों की तरह ही महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे के दांतों की देखभाल के लिए माता पिता को बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चों के दांत और मसूड़ों को साफ मुलायम गीले रुमाल से सफाई करना चाहिए। सही तरीके से 3 साल के ऊपर के बच्चों को ब्रश अपने देख रेख में करवाना चाहिए। बच्चों की एक चिकनी छोटा गोलाकार गति से दांतों की सतह पर ब्रश घुमाना चाहिए और रात में अवश्य ब्रश करना चाहिए। चावल के दाने के आकार के बराबर टूथपेस्ट जो फ्लोराइड युक्त हो उसका उपयोग बच्चों में किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों को कम मीठा खाना दें एवं कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें एवं समय समय पर कुल्ला करवाने की सलाह भी देते रहें। भले ही आपके बच्चे के दांत से जुड़ी कोई समस्या ना हो परंतु आप अपने दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट के पास जाएं, ओरल हेल्थ चेक जरूर कराएं जिससे उन्हें दांतों के स्वास्थ्य के बारे में सही शिक्षा मिल पाएगी जिसे वह अपने जीवन भर अपनाएंगे। आखिर में जाते जाते दांतों की देखभाल हेतु कुछ सलाह। नियमित रोजाना 2 बार ब्रश करें, 2 मिनट तक करें। मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश का प्रयोग करें एवं फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट के साथ ब्रश करें एवं नियमित रूप से हर 6 महीने पर अपने दंत चिकित्सक से मुंह की जांच करवाते रहें, क्योंकि उचित मौखिक स्वच्छता स्वस्थ दांतों और मसूड़ों की कुंजी है जिससे आप अपनी सुंदर मुस्कान जिंदगी भर बिखेरते रहेंगे। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे और निरोग रहे।
1: भाई बहुत जानकारी के बाद मिलल, आ जैसे हमनी के कह रही हल कि भाई अपन दांत के बढ़िया से ख्याल रख, लेकिन के दोनों टाइम चाहे अपने भी अब बड़ बुजुर्ग के भी दोनों टाइम ब्रश करवाव है ना।
2: हाँ, आजकल लेकिन खातिर अगर बात कर जाओ देखी तो बहुत तरह तरह के लेकिन के मन लागल रहो ऐसे ब्रश भी एक से एक डिजाइन वाला बने लागल बा। हाँ। जैसे लेकिन तनी मन से ब्रश कर सा।
1: अब पहले तो भाई हमनी सब नीम के लकड़ी के मतलब छड़ी से है ना साफ कर रही।
2: गांव में सभी के हुए से करत रहे तो चली तो बहुत।
1: अरे कोई बात ना, तो नीमक के पत्ता उत्ता भाई ओकरे हम तो सब के ओकरे भूख बाग के भाई अपना पेस्ट में मिला दो।
2: हाँ बिल्कुल है ना।
1: कैसु भाई बड़ी बात है कि हमने के बढ़िया से रहे के है, दांत के बढ़िया से रखे,
2: शरीर के हर हिस्सा के हर अंग के ख्याल हमनी के करे के बा तभी जाके चुस्ती फुर्ती बनल रही।
1: हाँ।
2: वही हिस्सा में दांत भी आवेला जेकरा काम ही बाबा ही दांत बढ़िया से ना रही तो पूरा पाचन क्षमते खराब हो जाए। ऐसे हाँ। जरूरी बा दांत के
1: देख के मन मो खराब हो जाए जब हंसते वाला ही बस मन
2: हाँ,
1: खराब।
2: बिल्कुल ई वार्ता जो रहे दांत के देखभाल कैसे करी। वार्ताकार रहन डॉक्टर दयाशंकर जी, बहुत नीमन नीमन जानकारी अपन वार्ता के जरिए देले, तो सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद बा। आ अब जब नीक नीक बात होला नो
1: हाँ, तो इतना तो पहले से हाँ। कुर्सी पर जो झूमर था
2: एकदम
1: से हमरा लगे थे कि भाई
2: झूमर
1: श्रोता लोग इनके भी झूमर हाँ। सुनावे के चाहिए
2: एकदम, ताकि श्रोता भी झूमस।
1: हाँ।
2: तो चलिए यही बहाने सुनल जाओ झूमर शंकर राम जी के आवाज में।

0: विनीता बहिन देखिन बहुत बढ़िया एकदम झूमर रहल है ना।
1: झूमर तो बहुत बढ़िया है
0: हाँ,
1: विनीता
0: निचली
1: बहिन।
0: कोनवा के ऊंची रे जगतिया, बहुत बढ़िया अपने झूम रहल थी ना।
1: एकदम सही कहनी रहुआ तो
0: अच्छा
1: ऐसन से। हाँ
0: हाँ, लेकिन हमरा
1: हाँ
0: एगो भाई बात बढ़िया न लगल।
1: हाँ हाँ बोली।
0: हम यहाँ बैठल ही है ना, आज देखा है कि तू मोबाइल में लगल हो,
1: हाँ
0: ये तो बहुत गलत बात है। या कहीं घर कहीं जेबो करे,
1: हाँ
0: देखे आप मतलब कि कोई बोला लथुन आपने मोबाइल पर फुटूर फुटूर फुटूर करी तो लथुन, तो भाई
1: एकदम
0: बोले ला काहे लगी
1: एकदम
0: है हमरा।
1: एकदम। आजकल के समय में देखी दिव्या बहिन, पहले जब छुट्टी होत रहे ना, जब सभी केहू एक जगह जुटत रहे तो बहुत
0: हाँ
1: नीक लागत रहे कि एक जगह बैठ के लोग बात बतियात रहे, आपन आपन घर के बात भ गईल।
0: सुख
1: हाँ
0: है दुख
1: सुख है
0: है
1: दुख के
0: चाहे
1: बांटत
0: कोई
1: रहे।
0: बढ़िया मशवरा है कि भाई ऐसे करा वैसे
1: हाँ
0: करा।
1: बिल्कुल।
0: और तुम
1: लेकिन अब तो हाथे हाथ मोबाइल बा, सभी
0: हाँ
1: केहू मोबाइल में अंगुरी फेरे पर लागत बा,
0: तब
1: अपन वही में मन लागत बा,
0: सामने
1: तरह
0: से
1: तरह के
0: बतियो ना,
1: सामान।
0: उन्हें लाइक करियो कमेंट करियो। हाँ,
1: एकदम सही
0: ऐसने ऐसने काम कर जा है।
1: हाँ ये तो एकदम सही कह निरुआ कि सामने से आजकल बात करे के सिलसिला जोन बा वो बहुत कम भ गइल
0: हाँ
1: बा। भले ही रउआ बैठल बानी, राउ फोटो का लाइक हम जरूर कर देम, लेकिन मुंह
0: बतिया
1: पर नहीं की कह
0: ना,
1: सकत कि रउआ बहुत बढ़िया लगत
0: तो यह
1: रहे।
0: चीज में तोर लइकवो सीखतवा कि ना
1: हाँ एकदम
0: है,
1: सही
0: तो
1: कह
0: कहवा कि
1: तरी।
0: लड़का हमारे मोबाइल चलावी थे, तो
1: हाँ
0: लड़का के बाबू चलावी था, तो भाई माये जब चलावी थे तो लड़का के बाबू हम लड़का कहाँ जाए थे
1: एकदम
0: है,
1: सही कह
0: तो
1: निरुआ
0: एकरे
1: तो
0: से भाई
1: राउ
0: बड़ बुजुर्ग लोगन तो भाई अलग हो भी था।
1: एकदम एकदम राउ रहे सीख के हम अपन जीवन में जरूर उतारम कि
0: श्रोता
1: कम से
0: लोगिन
1: कम।
0: के भी
1: हाँ
0: उतारे के
1: श्रोता
0: चाहिए।
1: लोगिन के भी उतारे के चाहिए। एकदम सही कहतरी दिव्या बहिन कि जब आदमी एक जगह चार लोग बैठे रहे तो कोशिश करे के चाहिए कि आपस में बात कैल जाओ, हंसी मजाक कैल जाओ, आपस दुख सुख जोन बा वो अपन
0: हाँ, जे
1: मतलब
0: हमरा
1: हाँ साझा कैल जाओ।
0: सुझाव भी साझा कर जाए कि एक
1: बिल्कुल
0: दूसरा के
1: दुख सुख
0: जीवन
1: के आजकल
0: उन्नति
1: देखी साझा
0: पे
1: ना।
0: बढ़े।

0: करे के चलते बहुत बार हुआ सुन ले हुकम की बहुत कम कम उम्र में लोग अवसादग्रस्त डिप्रेशन शब्द जो
1: हाँ
0: अंग्रेजी में एगो शब्द बा
1: हाँ
0: वो हो
1: आ
0: जाता
1: कितना लोगों
0: है।
1: ओकरा
0: अब
1: मतलब
0: बताएं।
1: नयका नयका सब डिस्प्रेशन भी
0: हाँ
1: कहत
0: बिल्कुल
1: ये सब भाई।
0: बिल्कुल
1: हाँ मगही
0: हमनी के
1: भोजपुरी के
0: हाँ
1: हमनी तो हर तरह से
0: हाँ
1: बतावे के
0: एकदम
1: चाही।
0: एकदम एकदम सही कहा निरुआ। तो
1: एक
0: अवसाद
1: साथे
0: लोग के
1: साथे
0: भी तो
1: देखी
0: समय और
1: ना
0: या रहल
1: चौपाल
0: बा
1: के समय
0: एकदम।
1: ओरिया रहल है तो हमनी तनिका देर बाद बात करम खेती गृहस्थी के। हाँ
0: अब
1: अब
0: देखिए
1: खेती
0: बात।
1: गृहस्थी में
0: हाँ
1: हमनी सबसे पहले सुनम प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
0: एकदम समय भ चुकल बा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरामेडिकल है पारस। जी हाँ, पैरामेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की, रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं, राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम, हाँ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
3: हाँ।
4: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
3: जानकारियों का ही अभाव है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
3: जी।
4: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
3: जी।
4: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
3: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
4: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
3: तो
4: नहीं होगी।
3: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और उस जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहाँ तक कि और बढ़ ही रही है।
3: हाँ।
4: मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब

0: जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री ही कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि अब नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहाँ तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: अब फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हम हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय विषय जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल

0: के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
1: 2023 से
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और आगे भी कीर्तिमान रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा
0: हाँ।
1: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियाँ सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है,
0: हाँ।
1: सब कुछ समान है,
0: हाँ।
1: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशनल है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888 9155558888 ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233 ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।

0: अभी हमने सब सुन रही है। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। अब विनीता बहिन देखती नहीं इतने हमारा भाई मधुमेह हो गलवा है, तो हम मोटका अनाज कहियो मतलब बाजरा है तो ज्वार है तो रागी है तो कोदो सब मतलब वही सब के आटा बना
1: लेकिन
0: बना
1: देवे
0: के
1: बहन रोए ना,
0: खाई थी।
1: बहुत
0: हाँ
1: लोग अभी के समय में परेशानी से एकदम
0: हाँ
1: हल्कान भरे की मधुमेह जैसे बीमारी जोन बा बहुत कम कम उम्र के लइकन में भी हो जाता,
0: हाँ
1: तो जरूरी बा ओमे खान पान के बहुत ध्यान दे।
0: एगो
1: लेकिन
0: देखते
1: आज
0: हैं
1: के समय
0: ओकरे
1: में
0: में।
1: खान पान की
0: हाँ
1: अगर बात कही जाए तो बहुत मुश्किल बा कि भाई खान पान कहाँ से शुद्ध बेटा
0: और सबसे तो भाई आदमी कुछ खाए चाहे ना अनाज तो खेबे करे
1: एकदम
0: है
1: एकदम
0: कि ना। तो ओकरा में देखती श्री अन्न माने कि मोटा अनाज जैसे कि बाजरा रागी ज्वार कंगनी और कोदो के खेती आज के समय में किसान और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तब भारत सरकार और विश्व भर के स्तर पर भी एकर बढ़ावा दिल जा रहा है।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा पहल बा भाई।
0: हाँ
1: और साथे साथे देखिए ये कम लागत में अधिक मुनाफा करवावे ला दे बहन।
0: हाँ हाँ एकदम
1: श्री
0: है।
1: अन्न के खेती जोन बा ओमे कोनो बहुत महंगा उर्वरक हो गए चाहे कीटनाशक हो बहुत कम ओकर जरूरत होला,
0: हाँ
1: ऐसे खेती के लागत काफी घट जाला। चाहे पानी के भी अगर बात कही जाओ तो बहुते कम पानी में ही काम हो जाला। धान चाहे गेहूं के मुकाबला एकरा उगावे में बेहद कम पानी लगभग 70 से 80% कम के
0: हाँ
1: जरूरत होला। इस
0: हाँ
1: सूखाग्रस्त चाहे कम बारिश वाला क्षेत्र खातिर भी सबसे उत्तम फसल बा। कठिन मौसम होके ओहू में जीवित रहे के क्षमता होला। ई फसल अत्यधिक गर्मी चाहे सूखा के आसानी से सहन कर सकेला, जेकरा
0: हाँ
1: से फसल बर्बाद होवे के जोखिम बहुत कम हो जाला। अब बाजार में एकर मांग भी बहुत बढ़ता। स्वास्थ्य
0: अच्छा
1: के प्रति जो जागरूकता के बात कही जाओ तो ये बढ़े के कारण बाजार में श्री अन्न के मांग एकर कीमत लगातार बढ़ रहा बा, आज एकरा से किसान के बेहतर दाम मिल रहा बा।
0: हाँ सही कहती हैं। देखिन श्री अन्न के सुपर फूड भी कहल जाए काहे कि ई पोषक तत्व से भरपूर होबा है। तो ई अनाज सौंसे तरह से ग्लूटेन से मुक्त होबा है जे
1: हाँ एकदम
0: पाचन तंत्र के लेल बहुते नीमन है। और एकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होबा है जेकरा से ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ा है। ई मधुमेह रोगी के लेल सबसे नीमन आहार है। तो एकरा में पोषक तत्व भी प्रचुरता में खूब रहा है।
1: हाँ
0: तर
1: एकदम सही कहने रहो।
0: देखिए रागी में कैल्शियम के मात्रा सबसे ज्यादा होबा है जे हड्डी के मजबूत बनावा है। बाजरा और ज्वार में आयरन जिंक और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाल जा है
1: अरे
0: जे
1: वाह
0: एनीमिया माने कि खून के कमी के दूर
1: हाँ
0: कराए। और इसे भाई
1: वाह
0: हमने मैग्नीशियम लगी तो कैल्शियम लगी तो आयरन लगी
1: सभी कुछ खाती
0: दवाई
1: हूँ
0: खाइए
1: आदमी
0: उससे
1: दवाई
0: अच्छा है कि
1: खा बा बात
0: अनाजे
1: सही
0: खा।
1: बा एकदम
0: तो एकरा में उच्च मात्रा में डायट्री फाइबर होबा है जे वजन के नियंत्रित रखे और दिल की बीमारी से बचे में बहुते मदद करा है।
1: बिल्कुल। आ देखी श्रीयन के बात होता तो श्रीयन के फसल जोन बा वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति के प्राकृतिक रूप से बढ़ावेला। कम कार्बन धान की खेती की तुलना में अगर देखा जाओ तो श्री अन्न की खेती में ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन होला उहो 9 के बराबर होला, जेकरा
0: अच्छा
1: से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेला। आ कम समय में तैयारी आमतौर पर अगर देखा जाओ दिव्या बहन तो लगभग 70 से 100 दिन के भीतर पककर तैयार हो जाला,
0: हाँ
1: जैसे किसान जोन बा उस साल में दूसर का फसल भी आसानी से लगा सकता। अगर सीधा एक पंक्ति में कहा जाओ तो श्री अन्न के खेती कम पानी और कम लागत में पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचेले किसान के जेब और आम जनता के सेहत दोनों के दुरुस्त रखेला।
0: वाह बहुत
1: तब
0: बढ़िया
1: बात जब हमने के
0: दुरुस्त
1: जनता
0: रहे।
1: के और सुनियार के
0: हाँ
1: दुरुस्त रहे के कहने तो भाई खुश रहो तो ना जरूरी बा
0: खुश रहे लगी झूमर हमरा लगा ही है कि
1: एकदम
0: सुनना चाह डालती नहीं
1: झूमर झूमे के चीज है तो कहे ना सुनवाई हमने इन सभी झूमर
0: शंकर राम से।
1: सुने सभी।

0: तब दिव्या बहिन कैसन लागल झूमर?
1: बहुत बढ़िया हमरा लगल, ओकरो से बढ़िया लगल कि अपने जेने झूम रहल थी
0: हाँ
1: ना,
0: एकदम
1: हमरा तो भाई देखाई भी दे रहल हल, सुनाई भी दे रहल हल
0: एकदम। तो
1: श्रोत।
0: झूमर ऐसा हमारे कमजोरी अगर बात कहल जाओ दिव्या बहन, तो
1: हाँ
0: लोक गीत के एक हिस्सा अगर झूमर की कहल जाओ तो झूमर हमरा बहुते सुने में निक लागेला। आ हमरा बुझे में हमारे सुनिहार लोगन के भी बहुते निक लागल होई
1: हम सुन लिए कि तोरा गावे में भी बढ़िया लगा है, तो
0: एकदम
1: एक आदमी
0: सुनी
1: सुनल
0: कहेला
1: जाए तोरो से।
0: एकदम एकदम सुनवाई कहे ना सुनवाई
1: अब तो
0: तनी
1: लेकिन
0: गला तनी ठीक होके दी।
1: हाँ अब
0: हाँ
1: समय
0: तनी
1: भी ओरिया रहल
0: एकदम बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: समय और याता था, सबसे पहले तो शंकर राम जी के धन्यवाद के इतना निमन निमन गीत हमने इनके सुनौले। अब जाए के बेरा भगल, तो नमस्ते
1: चले
0: दिव्या
1: के
0: बहन।
1: नमस्कार विनीता बहन।

0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया गीत।

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को डीबीटी के

0: माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं

0: के साथ मोदी के साथ चलने को।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी।
6: बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांग जन है, विधवा बहने हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो बहने हैं, चाहे वृद्धजन हो, विधवा बहने हो या दिव्यांग जन हो, सबको पेंशन हर हालत 10 तारीख को उनके खाते में दे देना है।
1: मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। राजस्व

0: राजस्व महाभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कल से शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये शिविर सभी हलका में 17 जून तक आयोजित होंगे।
1: कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक में तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीसीसी नीति के तहत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में बिहार राज्य भंडार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पीसीडीओ पद पर चयनित 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वर्ष 1958 के बाद पहली बार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के राजचक बहाउद्दीन ग्राम पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1,20,000 रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता शिक्षक से निलंबन समाप्त करने के एवज में घूस दे रहा था। इधर ब्यूरो की टीम ने गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र से चौकीदार मनीष कुमार को 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार एक केस में नाम हटवाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गाछ में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत राज्य के 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: अररिया नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव के पास NH-57 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव पलट गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94,00,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार।

आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
1: बक्सर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी साइला ने बैठक कर अधिकारियों को आम लोगों, श्रमिकों, बच्चों, पशुओं को गर्मी में बचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्वास्थ्य संस्थानों में कूल रूम की व्यवस्था करने को कहा गया है। मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक काम का रोक लगाने, पेयजल, ORS और शेड की व्यवस्था सूचित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लू और डिहाइड्रेशन जैसे गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जिला प्रभारी मंत्री नंद किशोर राम और जिलाधिकारी साहिला ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। चुरावनपुर, रामपुर, कला और तेरा पंचायत में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक माह प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसमें राजस्व से पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, आवास से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य 30 दिनों के भीतर रखा गया है।
2: महीने के हर पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में किया जाएगा। हम लोग ये अपील करना चाहते हैं सभी जिलावासियों से कि वो बढ़ चढ़कर सहयोग शिविर में उपस्थित हों, भाग लें और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं, न केवल शिकायतें बल्कि अगर वो कोई सुझाव भी अगर सरकार को देना चाहते हैं तो सहयोग शिविर के माध्यम से दिए जा सकते हैं।
1: जिले के डुमराव प्रखंड के नुआव पंचायत और ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविर का उद्घाटन ऊर्जा सचिव अजय यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 26 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सूचना प्रणाली, CCTV कैमरे, प्लेटफार्म विस्तार, वायरलेस ट्रैक और क्विक वाटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिव्यांग जन अनुकूल व्यवस्था, रैप और आधुनिक शौचालय के निर्माण कराए जाएंगे। जिले के डुमराव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में स्टार्टअप और GST को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को व्यवसाय शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया, कर व्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त सचिव तेजकांत झा ने GST नियमों की जानकारी दी। निबंधक असित कुमार सिंह ने कंपनी पंजीयन प्रक्रिया को समझाया। वहीं जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ज्योत्सना वर्मा ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 और युवाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने छात्रों को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार के ऊर्जा सचिव अजय यादव और जिलाधिकारी साहिला ने बीते दिनों बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्लांट की कार्यप्रणाली, बिजली उत्पादन क्षमता, तकनीकी व्यवस्था, सुरक्षा मानकों की व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान

0: मशीनों की स्थिति, उत्पादन की प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। जिला नियोजनालय की ओर से आगामी 27 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त श्रम भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह कैंप लगेगा। इसमें कई निजी कंपनियां शामिल होगी। मेले के विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 395 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं 12वीं और ITI डिप्लोमा स्नातक बीटेक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों में नौकरी का अवसर मिलेगा। जिले में आगामी बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। प्रभारी सचिव अजय यादव ने बैठक के दौरान नाव की जांच, गोताखोरों की सूची और राहत सामग्री एवं आपात सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जल निकासी, घाट सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बक्सर जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक माहौल में सम्पन्न हो गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में विभिन्न दरगाहों और मस्जिदों में पहुंचे और सामूहिक रूप से ईद उल जहा का नमाज अदा की। नमाज अदा करने वाले लोगों ने दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी।
1: अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शिखर। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्ष, जानेंगे भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किए गए वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट करियर के बारे में। और होगी एक रिपोर्ट, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत राजधानी पटना में संचालित बी हब पर। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। 8 जून वर्ष 1936 के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डॉ संजीव चौरसिया ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। आकाशवाणी अपने आप में ये जन जन की आवाज और आगाज है। आकाशवाणी की जो प्रामाणिकता थी न्यूज के संदर्भ में, यानी कि हर लोगों की जुबा पे आकाशवाणी की ही आवाज की इंतजार रहती थी। 90 वर्ष विश्वास का वर्ष, एक अपनी आगाज और आवाज का वर्ष। इस 90 वर्ष के लिए आकाशवाणी को इस यात्रा तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
1: बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज के साथ।

0: एशियन गेम्स के लिए भी चुना गया है। आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट करियर के बारे में।
1: समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर भारतीय क्रिकेट के फलक पर सबसे चमकीले सितारे के रूप में उभरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने केवल 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। यूथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंद में शतक जड़कर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2026 वैभव के क्रिकेट करियर का गोल्डन टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इस सीजन में उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता। साथ ही वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइकर और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड भी अपने नाम किया। आईपीएल से ठीक पहले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में वैभव खिताबी जीत के नायक रहे। वैभव सूर्यवंशी का कैरियर इस समय भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में है। उन्होंने T20 क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब पूरी दुनिया की नजरें सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके डेब्यू पर टिकी है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राजधानी पटना के मौर्य लोक परिसर में उद्योग विभाग द्वारा विश्व स्तरीय को वर्किंग और को लर्निंग इनोवेशन हब बी हब की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स को किफायती ऑफिस स्पेस, मेंटोरशिप और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और उससे जुड़ी विभिन्न पहले युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने का अवसर दे रही हैं। उद्देश्य केवल नौकरी पाने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो स्वयं रोजगार सृजित करें और दूसरों के लिए भी अवसर बनाएं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमी रामाशीष कुमार भी ऐसे ही युवाओं में शामिल हैं जिन्होंने सरकारी सहायता के बल पर अपने विचार को एक सफल उद्यम का रूप दिया।
3: बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत हमें जो है 10 लाख रुपए का फंडिंग ग्रांट हुआ है और मैं दिल्ली छोड़ के बिहार में आज स्टार्टअप कर रहा हूँ और मेरा भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है। मैंने भी बहुत सारे जगह पे कॉर्पोरेट में काम किया है और बिहार स्टार्टअप जो है आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो थोड़ा उतना ज्यादा ये नहीं था ट्रेंड। आज के टाइम में बिहार से बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं और उनमें से एक एडुअल क्लासेस भी है जो कि हम लोग एजुकेशन के एरिया में काम कर रहे हैं।
2: सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि काम करने के लिए बेहतर माहौल भी तैयार किया जा रहा है। पटना के मौर्य लोक परिसर में विकसित 154 सीटों वाले को वर्किंग स्पेस में वर्तमान में 65 से अधिक स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। रियायती शुल्क पर यह उपलब्ध सुविधा नए उद्यमियों को कार्यालय, प्रशिक्षण और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। तकनीक आधारित स्टार्टअप चला रहे उद्यमी रोशन का कहना है कि ऐसी सुविधाएं उद्यमियों के लिए व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है।
4: बिहार में जो इनिशियल स्टार्टअप्स हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी जो आपको इनिशियली 10 लाख की फंडिंग देती है और सीड स्टेज में अगर आप जाते हैं तो 15 लाख की फंडिंग और मिलती है। इसके साथ आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा थ्रू वर्किंग स्पेस।
2: एक ओर सरकार स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवा भी नए अवसरों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में यही पहले बिहार को एक सशक्त स्टार्टअप केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा

0: अपेक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा

0: ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: cashlaw.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,000

0: 822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations

0: तुर्की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और यह फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5

0: स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और अवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए।

0: वो फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके दो फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के दो बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ्त की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
3: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख

0: तक रुलना में तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीद कार्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक रखते हैं जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपये के कर्जे जात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है,

0: आज हम उसका विश्लेषण करेंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ही कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है, कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो, कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके

0: जैसे उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है। और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है। अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि किसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस

0: कि लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदिया गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
2: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार

0: समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इम्पोर्ट करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुल्किम है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार

0: और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कुनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है।

0: तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम इस समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत प्राय का, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में हम दोनों फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं शायर लुधियानवी ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सबकी अपनी आकाशवाणी। साहित्य संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत और भी समृद्ध और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना सा मैं। जन जन की वाणी, इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है।

0: कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक, आकाशवाणी।
1: आराधना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार एस डी बर्मन।

नमस्कार, मेरा नाम नीलम चौधरी है। मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूँ और एक कथक डांसर भी हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहाँ हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूँ, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, युववाणी एक कार्यक्रम हुआ करता था उस समय, जिसमें उस समय के यूथ आते थे, अपनी बात कहते थे, अपनी पसंद के गाने सुनाते थे, बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम होता था। शाम में 7-7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें। थैंक यू।

तीसरी मंजिल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार सुमन कल्याणपुर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।

अभी आप गाइड फिल्म का गीत सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार एसडी बर्मन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम दोनों फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे ज्वेल थीप फिल्म का आशा भोसले की आवाज में। गीतकार होंगे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार एच डी बर्मन।

रात अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास।

0: बड़ा पुरदर्द गाना है ये, इसकी रचना भी बड़ी मुश्किल से की मैंने। समझ में नहीं आता था कि इस गाने के लिए कौन सा राग चुनूं। एक दिन सोचते सोचते अचानक मुझे ख्याल आया कि इस गाने के लिए सिर्फ नंद राग ही मुनासिब होगा। लता मंगेशकर और डायरेक्टर राज खोसला मेरे पास ही बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी राग में अच्छा बनेगा। बस फिर क्या था, रोशनी दिखाई देने लगी, गाना सुरों में ढलने लगा।
1: राय साहब मेहदी अली खान के द्वारा लिखा हुआ और मदन मोहन के द्वारा संगीत से सजाया हुआ मेरा साया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से

0: बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and develop